0: 101.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
8: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
9: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
10: Ocho.
3: Hoko.
10: Ocho.
3: Hoko.
10: Ocho.
3: It's Hoko.
11: अरे बस भी करो यार।
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
11: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
5: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
19: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

भाई मिस बैड मैम ड्रामा मिस इपी दैट इज इपी द हिपी इज हियर इन द स्टूडियो बिकॉज इट इज ऑगस्ट. इट इज द फर्स्ट मंडे इन ऑगस्ट. एंड हाउ आर यू गाइज डूइंग टुडे? आई एम तो वेरी वेरी गुड, वेरी फाइन शाइन. लेकिन आई एम फाइन ऑल्सो एंड आई एम शाइनिंग ऑल्सो. दैट्स राइट. Okay, guys, it is Monday. I hope you've had a wonderful weekend and I hope you are all recharged up for this amazing week. क्योंकि August is my favorite month. पता है क्यों? क्योंकि August में मेरा birthday होता है. Woohoo! It's my birthday month. लेकिन also August is also a really nice month. Other than that, बड़ी सारी छुट्टियाँ होती हैं, Independence Day होता है, राखी होता है और कितनी सारी चीज़ें होती है ना? तो गाइज आई होप यू हैड ए ब्यूटिफुल स्टार्ट टू दिस अमेजिंग मंथ. आई कॉन्ट बिलीव मोर देन हाफ द ईयर इज ऑलमोस्ट ओवर. कुछ 4 महीने बाद ये साल भी 26 भी खत्म हो जाएगा, फिर 27 आ जाएगा और फिर 28 आएगा. ओ नो, टाइम इज फ्लाइंग. लेकिन आपने अपने अपने सपनों को पूरा किया कि नहीं? किया ना? अभी नहीं किया तो 4 महीने और बचे हैं 26 में. कुछ ना कुछ कर ही दो. छोटा मोटा सपना ही देखो, मतलब बहुत बड़ा सपना तो जरूरी नहीं है, छोटा सपना ही देखो, छोटा कर दो. लेकिन उन छोटे से सपनों में ना एक सपनों का घर भी बना लो. अगर नहीं बनाया है तो देन यू शुड, और यू इफ यू वॉन्ट टू, दैट इज यू शुड कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद अ ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्रीज टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. तो पूरे 50 स्टेट में लाइसेंस है. अगर आप घर खरीदने के सोच रहे हैं एंड यू लुकिंग फॉर द राइट लोन ऑप्शन एब्सोल्यूटली टेलर टू योर नीड्स, चाहे फर्स्ट टाइम होम ओनर है, अपग्रेड करें या रिफाइनेंस करें, कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स. मेकिंग ड्रीम्स होम हैपन, ड्रीम होम मॉर्गेज. तो गाइज लेट्स बिगिन The next 3 hours today, we have a lot of fun stuff lined up for you. Lekin pehle, a chota sa gaana.

एग्जैक्टली गाइस, फिल्में कितनी सही नहीं होती हैं। बॉलीवुड फिल्में आप देखते हो, सब हनीमून पीरियड ही दिखाते, सिर्फ उसमें ना जब पहला पहला प्यार होता है, द चेज, द गाय चेज इज द गर्ल, गर्ल कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, एंड देन द गाय कीप्स डूइंग द चेज एंड द गर्ल फाइनली सेज ओके, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद जो 6-9 वाली जो रिलेशनशिप फेज है, याद है आपको पिछले हफ्ते ऑन थर्सडे वी वर टॉकिंग अबाउट द 3-6-9 वाला रूल ऑफ द रिलेशनशिप। वो 6-9 वाली रिलेशनशिप दिखाते ही नहीं है, 6-9 वाली रिलेशनशिप, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स जो हनीमून फेज होता है सिर्फ वहीं तक ही अटक जाती है। आगे क्या होता है बहुत ही कम मूवीज में दिखाते हैं, है ना? इजन दैट सैड भाई, पूरी पिक्चर तो दिखाओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर हम लोग अपने अपने ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे और हम सोच रहे हैं भाई हमारी लाइफ काश बॉलीवुड फिल्म जैसे होती, ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे हॉलीवुड लोकेशंस में, जैसे फॉरेन कंट्री गए, स्विट्जरलैंड में या कहीं पे बड़े घास में, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम गा रहे होते, डांस कर रहे होते, कितना मजा आता है ना। वाओ, काश लाइफ इतनी इजी होती तो मतलब कुछ और ही फीलिंग होती। तो एनीवेज गाइस, आगे बढ़ते हुए सपने तो वैसे देखने ही चाहिए, व्हाई नॉट? मतलब वी कैन ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज ड्रीम इवन इफ इट्स नॉट रियलिटी, देयर इज नो टैक्सेस फॉर ड्रीमिंग, राइट? तो आगे बढ़ते हुए गाइज, टुडे वी आई हैव अ रियली नाइस शो प्लान फॉर यू। टुडे आई डिड माई रिसर्च एंड आई सेड आई हैव टू टॉक अबाउट दिस न्यू थिंग दैट आई फाउंड। वी गोना टॉक अबाउट दिस गाय कॉल्ड ब्रायन जॉनसन। ओके, ही इज़ ए रियली रियली फेमस क्रिएटर, बट ऑल्सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ वेनमो। वेनमो आपको पता ही है, इट्स लाइक अ मनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वी ऑल यूज इट टू सेंड 10-15 डॉलर जो भी है, अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हैं जो भी, टू स्प्लिट मनी एंड ऑल ऑफ दैट, सुपर इजी, सुपर कन्वीनियंट। तो ही इज द फाउंडर ऑफ दैट, बट उसने अपनी कंपनी वगैरह बेच दी। बट राइट नाउ ही इज ए फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द मनी, ही इज डूइंग इट बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट्स टू हैव फन, एंड हिज करंट ऑब्सेशन इज हाउ ही कैन रिड्यूस द बायोलॉजिकल एज ऑफ हिज बॉडी विदाउट, लाइक ही इज एजिंग, लाइक ही इज प्रिटी ओल्ड, लेकिन ही इज ऑब्सेस्ड विथ स्टेइंग यंग। एंड टुडे आई केम अक्रॉस दिस वीडियो वेयर ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ द रॉन्ग रिलेशनशिप कैन रियली एज यू, लाइक हिज एवरी थिंग अबाउट हिम इज अबाउट एजिंग। सो इवन द रिलेशनशिप दैट यू आर इन, हाउ इट एक्चुअली सब्सट्रैक्ट्स द अमाउंट ऑफ ईयर्स दैट योर लाइफ फ्रॉम योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 साल है, तो उसमें से 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ टॉक्सिक और अनटॉक्सिक योर रिलेशनशिप इज। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन वो करेंगे हम 8:30 बजे के बाद, क्योंकि तभी हम वो बातें करते हैं। उसके पहले हम गाने शाने सुनते हैं गाइज, और 8 बजे आपको पता है गिव अवे होता है, एंड वी हैव सम अमेजिंग न्यूज एंड सम अमेजिंग अनाउंसमेंट्स। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कंटिन्यू विद दिस रियली क्यूट सी सॉन्ग।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
3: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.

भाई ऑटो प्ले में कई बार ना डायलॉग्स भी बच जाती हैं, तो अभी हम लोगों का ब्रेक था तो ब्रेक में हम ऑटो प्ले लगा के जाते हैं। कई बार गाने ऐसे आते हैं कि उसमें डायलॉग बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, तो हम लोग नहीं चूज़ करते, अनफॉर्चुनेटली इट्स बाय डिफॉल्ट। हाउएवर यू गाइस, अगर आपको बातें ही सुनी है तो मेरी बातें सुनिए ना मेरे पास ज़्यादा एंटरटेनिंग बातें हैं बोलने के लिए तो गाइज, डिड यू लैंड अप गोइंग टू द प्रभु देवा गिग? आई होप यू वेंट फॉर इट, बिकॉज आई सॉ सम वीडियोज ऑफ पीपल पोस्टिंग क्लिप्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्सर्ट। एंड इफ यू डिड गो टू द प्रभु देवा गिग, आई डिडन गो बिकॉज रिमेंबर आई टोल्ड यू मेरा भी शो था उस दिन, तो भाई मैं अपने शो में जाऊँ कि प्रभु देवा के शो में जाऊँ? लेकिन अगर आप प्रभु देवा के शो में गए थे तो प्लीज गिव मी अ कॉल एंड टेल मी हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस सो आई कैन शेयर इट विद एवरीबॉडी ऑन एयर, राइट? तो गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555। आई नो सम ऑफ यू वन सम गिव अवे टिकट्स फॉर द प्रभु देवा शो फ्रॉम सम अदर शो। मेरे शो से तो गिव अवे नहीं था प्रभु देवा के टिकट्स का, लेकिन अगर आपने दूसरे शोज में से गिव अवे टिकट जीता है एंड आप गए हैं तो मुझे बताइए हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। एंड आगे बढ़ते हुए, आपको पता है कि दिस इज़ लाइक आई सेड, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे मंथ एंड आई थिंक इट इज़ माई बर्थडे मंथ। थैंक यू सो मच जिनको लग रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन गाइज नॉट सो सून, पूरा महीना बचा है अभी, इट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। हाउएवर पर मैं पता है क्या सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम गोल्ड दिस टाइम, वाई नॉट, आई डिजर्व टू ट्रीट माई सेल्फ। इसीलिए इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो काइंड ऑफ ट्रीट योर सेल्फ, यू शुड हेड डाउन टू श्री कृष्णा ज्वेलर्स, बिकॉज ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी, एंड यू डिजर्व टू फील ब्यूटिफुल। ओके, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइन टू स्पार्कलिंग डायमंड एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शन, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स। नाउ वेलकमिंग यू एट देयर न्यू लोकेशन 13145 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग द फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मोमेंट्स सिंस 1967, सो मैनी ईयर्स। तो ज्वेलरी से आया गाना ये मुझे याद, तो इन्जॉय दिस वन। मुझे नहीं पता किसकी शादी हो रही है, लेकिन किसी की तो हो ही जाएगी।

कभी फ्रिस्को, कभी प्लेनो, कभी मैकिनी, कभी फोर्ट वर्थ. हम लोग अपना वर्जन बनाते हैं यार, है ना. वी आर इन DFW, वी आर इन डालसपुरम, सो वी शुड मेक आर ओन वर्जन ऑफ इट. कभी डाउनटाउन, कभी मिड टाउन, कभी प्रेस्टन हॉलो. तो इट डजेंट मैटर गाइज. आज मेरा थोड़ा मूड हो रहा था 90s के क्लासिक्स सुनने का, तो आई एंटरटेन यू विद सम ऑफ दीज अमेजिंग क्लासिक्स. लेकिन आगे बढ़ते हुए, दिस इज ऑगस्ट यारो. ऑगस्ट में पता है क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे. 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे. एक्चुअली टेक्निकली 15 आज़ाद के दिन आज़ाद नहीं हुए थे. 26 जनवरी टेक्निकली असली में इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए. अगर आप रिसर्च करोगे तो टेक्निकली वो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम 15 अगस्त मनाते हैं. तो क्या हो रहा है 15 अगस्त वाले दिन, उसके आसपास? सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट इयान्स आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे 15 अगस्त फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को. तो अगर आप फ्रिस्को में हैं तो देन प्लीज मेक श्योर यू गो टू दिस आनंद बाजार. इयान्स आई और आयान्स, आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली प्रोनाउंस इट, बट इट्स IANT. एंड द बेस्ट पार्ट, इट इज कम्प्लीटली इंडोर्स एंड फ्री फॉर एवरी वन. इंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, ए ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इयान्स आनंद बाजार 2026. तो अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाए हैं तो अपना यू नो इंडियन नेशनल फ्लैग वाले कपड़े पहन के और एक वाइट कुर्ता पजामा पहन के, या फिर वाइट साड़ी शाड़ी डाल के उसके ऊपर एक ग्रीन ऑरेंज कलर का एक कुछ स्कार्फ शार्फ डाल के पहुंच जाओ यार, सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस. क्योंकि देखो, अगर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होती तो हम शायद अमेरिका में नहीं होते, क्योंकि हमको शायद अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती यहाँ आने की. यू नो कॉलोनाइजेशन वॉज नॉट द बेस्ट थिंग दैट वॉज हैपनिंग. हाउ एवर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बिकॉज दैट हैपन्ड इन द पास्ट एंड वी आर एंजॉइंग आवर ब्यूटिफुल लाइव्स हियर इन डालसपुरम. तो लेट्स लिसन टू अ फ्यू मोर ट्यून्स एंड देन व्हेन यू कम बैक देन वी विल प्ले द गिव अवे गेम. और आज का गिव अवे इज फ्रॉम द फन पिज्जा किचन, विच हैज यमी पिज्जा. सो मेक श्योर यू ट्यून इन अराउंड 8:05.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री।

0: भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर, चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो। अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad and 75-inch, 65-inch and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trust solutions with 100% privacy।
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और visit astrologereeshwar.com।
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
8: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

भाइयों बहनों दोस्तों यारों साथियों, वी आर बैक. दिस इज इपी द हिपी, ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली, एंड यॉल आर लिस्निंग टू फनेजर रेडियो 104.9 FM. आज तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, आई थिंक थोड़ा सा दिया था बट मुझे याद नहीं है. मेरे भाई दिमाग से सब कुछ निकल जा रहा है आजकल. हाउ एवर, आपको पता है ना इस शो का नाम क्या है? एन इवनिंग इन. अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के या जहाँ भी आप रेडियो सुन रहे हैं वहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स का कंप्लीट कर दीजिए. तो गाइस आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे बिकॉज इट इज 8:10 ऑन द क्लॉक. एंड आपको पता है 8:10 को क्या होता है? 8:10 को होता है हमारा गिव अवे टाइम. दिस इज माई फेवरेट गिव अवे. बड़म्बड़िश. ओके, तो गाइस इस बार का गिव अवे इज फ्रॉम द फन Pizza Kitchen. They have launched a brand new Mexican inspired pizza lineup. Ooh! And these aren't just pizzas. They are a full on flavor fiesta. Wah! From fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco and the seafood pack, Señor Camarón, and the loaded mucho macho pork. Every bite is bold, exciting and made to impress. Ooh, that sounds delicious. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession, and for more details, you can also go to funpizzakitchen.com. तो आप क्या जीत सकते हैं गिवअवे में? एक पूरे $10 का गिफ्ट कार्ड from the Fun Pizza Kitchen by answering a simple question. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, सेम ही है. मैं गाना बजाऊंगी, आपको बोलना है कि व्हाट सॉन्ग डज इट साउंड लाइक इन आवर बॉलीवुड टाइम्स. दिस वन इज एक्चुअली एन इजी वन. इट्स फ्रॉम अ रियली रियली पॉपुलर मूवी. इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. लेकिन मैं मूवी का नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो गाना आपको पता ही चल जाएगा. ये पूरे मूवी में ना बहुत बार ये गाना बजता है. वो इट्स लाइक अ थीम सॉन्ग. उसके ऊपर भी गाना है, थोड़ा लाइक पुनर्जन्म वाली वाइब्स भी है, थोड़ा भूत भी है वगैरह वगैरह, वैसी वो वाली मूवी है. एंड मैं उससे ज़्यादा नहीं बता सकती, अदरवाइज मैं तो पूरा आंसर ही दे दूंगी. तो खेलें, प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग. और बिना गाना सुने पहले डायल मत करना यार, पहले गाना सुन लो फिर डायल करना और फिर बोलना कि कौन सा गाना है. आपको हिंदी वाला गाना जो है वो बताना है. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट अस प्ले द सॉन्ग.

0: Hi.
1: Yeah, I can hear you.
0: Okay, great. Perfect.
1: Hi.
0: So, first tell me your name and then tell me the correct answer.
1: Hi, this is Arya.
0: Arya?
1: So the movie is, Once in December.
0: Nahi, you have to tell me the Bollywood song that it sounds like, not the original song.
1: Okay. Om Shanti Om?
0: Yes, good. Yes, what is the song name?
1: The song name is the one where Deepika, right? Shah Rukh Khan plays on piano.
0: Yeah, you're in the right territory, but gaane ka hi hai. नहीं
1: okay.
0: कोई बात नहीं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. हैव टू टेक द नेक्स्ट कॉल बट थैंक्स, दैट वाज अ गुड ट्राई. हाय, कैन यू हियर मी? यू आर ऑन फर्नीचर रेडियो.
2: हाय,
0: यस, टेल मी.
2: आई थिंक आई हैव द आंसर.
0: ओके, फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
2: भाग्यश्री?
0: नहीं, एक्ट्रेस का नाम नहीं चाहिए मुझे, मुझे गाने का नाम चाहिए. बॉलीवुड वाला जो गाने का नाम है वो बता रहे हैं आप.
2: गाने का नाम वो दास्तान है, ओम शांति ओम, वो ऐसे म्यूजिक होता है ना.
0: हाँ बिल्कुल, क्या बात है, वाह. भाग्यश्री आपका नाम है ना? भाग्यश्री?
2: हाँ.
0: ओ अच्छा, मुझे लगा आप एक्ट्रेस का नाम बता रहे हो, भाग्यश्री. मुझे कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने कहा मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं चाहिए, मुझे गाने का नाम चाहिए.
2: I thought you started with a joke, but yeah, that's my name.
0: That was a confusion. Well, congratulations, Bhagyashree. You have won the giveaway. Woo-hoo! Okay.
2: Thank you.
0: Okay, Bhagyashree, you have won the $10 gift hamper. Please stay on the line. I'm going to play a song in the background and then we'll take your information, okay?
2: All right.
0: Okay, guys, आप ये वाला गाना enjoy करिए तब तक.

हम्मा एग्जैक्टली गाइस, गिव अवे हो चुका है. कंग्रेचुलेशंस टू भाग्यश्री एंड कंग्रेचुलेशंस टू भाग्यश्री फॉर विनिंग द गिव अवे. हाँ, एक ही विनर है हमारे पास आज. ये वाले विनर में, ये वाले, अरे क्या बोल क्या रही हूँ मैं, ये वाले गिव अवे में एक ही विनर है. नॉर्मली कभी कभार दो भी होते हैं, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही है. तो कंग्रेचुलेशंस टू भाग्यश्री भाई. थैंक यू ऑल्सो जिन लोगों ने बाकी कॉल किया, एंड यू वर सो क्लोज टू द एक्चुअल सॉन्ग. बट अनफॉर्चुनेटली एक ही गिव अवे है, तो हु एवर इज द फर्स्ट कॉलर विद द करेक्ट आंसर एंड हु एवर इज एबल टू मेक इट रियली क्विक, उन्हीं को जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए गाइज, एज आई प्रोमिस्ड यू, 8:30 को वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग ज्यूसी एंड समथिंग फन. यस, इट इज़ नॉट अ स्टोरी टाइम, इट इज़ अ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टाइम. तो आप ये वाला गाना सुनते रहिए. वी विल बी बैक राइट आफ्टर दीज अमेजिंग अमेजिंग ट्यून्स. एंड वाओ, आई हैव सो मच एनर्जी टुडे, आई लव इट. एनर्जी होनी चाहिए यार, मंडे है, क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना?

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
8: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
7: What?
9: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
12: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
13: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: भाई, योर सेलिब्रेशन पार्टनर तो मैं भी हूँ, बिकॉज गाने तो मैं भी बजाती हूँ आपके सेलिब्रेशंस पे, बिकॉज आई एम इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू Fun Asia Radio 104.9 FM एंड दिस इज माय शो एन इवनिंग व्हिच इज नाउ अ नाइट इन डैलस। तो गाइज, आपने मुझे बताया नहीं, हूएवर वेंट टू प्रभु देवा शो, हाउ डिड यू लाइक इट? बट कोई बात नहीं, I will tell you about my show that happened on Saturday, which was so, so good. There was such a big turnout and I'm so happy. We had so much fun. I actually got to play a little bit of guitar too. It was the first time I was playing guitar on stage. Mere ko aata hai waise bajana, but I don't take it to stage. But I played some guitar and we had a lot of fun and lots of people turned up. So that was pretty good. आगे बढ़ते हुए गाइस, दिस सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान एंड जिमरान, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग All your exams for your new job, and I hope you like it. Of course, you will like it because you requested for it.

वैसे इस गाने में आपने देखा है राखी सावंत कितनी सुंदर लग रही थी. आई मीन यू नो नाउ शी लुक्स अ लॉट डिफरेंट. शी इट लुक्स अ लॉट ऑफ इट जस्ट लुक्स लाइक एक्स्ट्रा डन अप. हाउ एवर शी वॉज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, लाइक नेचुरल ब्यूटी. यू नो आपने देखा है इसका वीडियो, इस गाने का? नहीं देखा है तो देखो.

भाई शाहरुख खान तो जीत गया आर्म रेसलिंग में, आप जीतेगी नहीं है ना भाई। आर्म रेसल करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। आगे बढ़ते हुए गाइस, आपको पता है अर्चना दीदी का रिट्रीट हो रहा है, लेकिन हु इज अर्चना दीदी? भाई आपको मैं बता रही हूँ ना, अगर आपको पीस म्यूजिक और मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना है तो अर्चना दीदी इज होस्टिंग ए फ्री फ्री द की वर्ड हियर इज फ्री FREE फ्री विच राइम्स विद थ्री, बिकॉज दिस रिट्रीट इज अ 3-day रिट्रीट इन DFW. Join on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson. August 8th or 9th ko bhi ho raha hai at Shri Raghunath Temple in Plano. And August 8th ki shaam ko ho raha hai DFW Hindu Temple mein at Ekta Mandir in Irving. To agar aapko meditation karna hai and you're feeling super stressed out in life, and you want to be like, nahi yaar, I need to wind down, I need to connect to my inner soul and inner peace, and I just need to like dial out the entire world and just like connect with myself, then this is the place to go. Kya milega aapko? Meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Wow, free food bhi ho raha hai, wow. Register free. The keyword here is free, guys. At now, register for free now at meditation.funasia.net. जो पहले 30 registrations है ना, उनको अर्चना दीदी की audio और video भी मिलेगी. वाह, क्या बात है. That means अगर आप अगली बारी अर्चना दीदी के retreat में नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनको घर पे भी सुन सकते हैं, because you get the audio and video clips of that too. Isn't that amazing? तो अर्चना दीदी के पास जाइए and maybe you get a lot of benefits from it. तो आज जैसे मैंने आपको बोला था, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रायन जॉनसन, लेकिन गाइस ये गाना लगाती हूँ फिर मैं आती हूँ, पक्का पक्का प्रॉमिस. ओके ओके, मम्मी कसम. ओके चलो ये गाना सुनो तब तक.

गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वी विल टॉक अबाउट द अमेजिंग, आई डोंट नो इफ ही इज अमेजिंग और नॉट, सम थिंग्स आर लिटिल लिटिल आउट ऑफ इट, बट डू यू गाइस नो हु ब्रायन जॉनसन इज? ओके, सो ब्रायन जॉनसन इज बेसिकली एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज नोन फॉर फाउंडिंग ब्रेन ट्री, विच वॉज लेटर अक्वायर्ड बाय पेपैल. And I think it's called Braintree Venmo. So, you know how PayPal has kind of bought Venmo, right? So, that was his main thing. And the second thing, he actually became pop. He became rich with that. But what he became popular with is his highly publicized longevity project, okay? Called Project Blueprint. So, usme kya karte hain? He calls himself a biohacker. Biohackers are basically those people जो मतलब जिंदगी अपनी उनकी पूरी लाइफ का पर्पस है टू स्टे यंग एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट. दैट इज व्हाट देयर अल्टीमेट यू नो मोटो इज. तो बेसिकली अभी रिसेंटली आफ्टर सेलिंग हिज कंपनी विच अक्वायर्ड वेनमो बिफोर ब्रेंट्री वर सोल्ड टू पेपैल, तो आफ्टर ही बिकेम रिच ही डिसाइडेड कि भैया मैंने पैसे वैसे बहुत कमा लिए, अब नाउ माई न्यू प्रोजेक्ट इज दिस वॉट अ एंटरप्रेन्योर डज, राइट? एक काम होता है फिर दूसरा, दे कीप इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स. तो देन ही बेसिकली फोकसेस ऑन हिज, ही बिकेम अ क्रिएटर, ही बिकेम एन इन्फ्लुएंसर एंड ही बिकेम अ क्रिएटर एंड नाउ ऑल ही डज इज मेक यूट्यूब वीडियोज एंड फेसबुक रील्स एंड इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वगैरह करके. और वो मतलब ही कीप्स एडिंग दीज थिंग्स. आई थिंक देर वॉज वन वीडियो आई सॉ, उसमें ही वॉज सेइंग ही इज कंज्यूमिंग आई डोंट नो 200 पिल्स और समथिंग लाइक दैट इन अ डे just as supplements in order to counteract the deficiency jo hame khane se nahi milta hai. I mean, he's got like a really extensive routine. To main kyun bata rahi hu unke bare mein, main I'll come to that, I promise you. It's totally related to my usual theme, which is about dating and relationships. To longevity protocol, okay? To unke jo project blueprint hai, what does that include? It is a highly structured plant focused diet. It's not a plant based diet, it's a plant focused diet, which means zyada sabzi or more fruits and veggies with carefully measured calories. So wo apne calories hamesha properly count karte hain, which I support, okay? Daily exercise and strength training, matlab roz exercise karna zaruri hai, strength train karna zaruri hai in order to maintain your muscle mass, by the way, very important things. Early bedtime, which he is, by the way, unka early bedtime pata kitne baje hai? 8:30 शाम के. अभी तो 8:30 तो कब के बज चुके हैं, अभी तक तो अगर इफ आई वॉज फॉलोइंग मैं तो सो चुकी होती, लेकिन हमारा वो स्केड्यूल है नहीं. विथ स्ट्रिक्ट स्लीप ट्रैकिंग, ही ट्रैक्स स्लीप ऑल्सो, एक्सटेंसिव रेगुलर ब्लड वर्क, इमेजिंग एंड अदर हेल्थ मेजरमेंट्स, डजन्स ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक आई सेड लॉट्स ऑफ पिल्स, ओके, एंड फिजिशियन सुपरवाइज मेडिकेशंस एंड कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बायोमार्कर्स intended to optimize biological age rather than chronological age. तो उसका मतलब क्या हुआ? So he has come up with these different trackers besides the usual one, heart health, liver health, वो सब तो हम लोग हमेशा ही check करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे ऐसे markers हैं which tracks his biological age, which means you could be 45, but if you're really healthy and fit, you could feel like 25. Similarly, you could be 25 and if you have a really unhealthy lifestyle and you're eating and drinking and smoking and all of that, then you could feel like you're 50. So it depends. So that is what he means. So biological age means it doesn't matter what your actual age is, but what your body actually feels like it. Okay. And I 100% support that. So we will talk a little bit more about this and I will tell you why this is important regarding our relationship conversation. Lekin iske pehle ek chhota sa gana.

गाइस, जैसा मैं बोल रही थी, व्हाट डज ही से अबाउट रिलेशनशिप्स? सो ही सेज दैट अ टॉक्सिक पार्टनर, लाइक अ टॉक्सिक एक्स और अ टॉक्सिक प्रेजेंट पार्टनर, जिसके साथ आपकी हमेशा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, अनबन होती है वगैरह वगैरह, या फिर आपको यू फील स्ट्रेस्ड अराउंड दैट पर्सन, दोज वी वुड कॉल टॉक्सिक, वे यू डोंट फील फ्री एंड यू डोंट फील हैप्पी, और यू डोंट फील लाइक आप दैट यू कैन डू योर बेस्ट. ओके, दैट टॉक्सिक पार्टनर इज ऑल्सो टॉक्सिक टू योर बायोलॉजिकल एज. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप दैट यू आर इन, वेदर इट्स अ मैरिज, वेदर इट्स अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, अल्टीमेटली प्रिडिक्ट्स योर हेल्थ इन ओल्ड एज मोर देन दीज अदर कैटेगरीज लाइक क्लास, IQ एंड जेनेटिक्स. तो मतलब कई बार हमें नहीं लगता कि ओ इफ दिस पर्सन इज रिच मे बी दे आर हेल्थियर बिकॉज दे कैन अफोर्ड रियली गुड डॉक्टर्स और रियली गुड हेल्थ डाइट एंड ट्रेनिंग एंड जिम एंड ऑल दैट. या फिर कई लोगों को लगता है कि अगर जेनेटिक्स में हेल्थी है, जिनको हार्ट डिजीज नहीं है, दे विल बी अल्टीमेटली हेल्थी. बट मोर देन एनी ऑफ दैट, इवन इफ यू हैव ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट यू आर एक्चुअली लिविंग विद ए टॉक्सिक पार्टनर हु ड्रेन्स द लाइफ आउट ऑफ यू, हु ड्रेन्स द इंटायर इंटायर एनर्जी आउट ऑफ यू, यू आर गोइंग टू बी एट अ लॉस इन टर्म्स ऑफ योर बायोलॉजिकल हेल्थ. ओके, एट अ ओल्ड एज, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50, रादर देन एनी ऑफ दीज अदर फैक्टर्स. एंड दिस वॉज अ स्टडी डन बाय हार्वर्ड, बाय द वे, इट्स नॉट हिज प्रिडिक्शन, इट वॉज अ स्टडी डन बाय हार्वर्ड. सो I think there's something more to it. I'm going to talk to you a little bit more about what his theory is. But pehle ye gana, and then we're going to go into a break around 9 o'clock, and then we come back and listen, talk some more.

0: Protect key employees, valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
1: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
1: What?
3: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

पता है सबसे फनी चीज़ क्या है, ये जो गाना भी नहीं बज रहा था, हलकट जवानी, व्हेन आई हैड फर्स्ट स्टार्टेड टीचिंग ना अराउंड 2013, व्हेन आई फर्स्ट गॉट इन टू दिस टीचिंग सिचुएशन एंड यू नो डिसाइडेड टू बिकम अ फुल टाइम म्यूजिशियन, देर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, छोटी सी बच्ची थी 11 साल की, और शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. शी इज़ वेरी फेमस नाउ, अभी उसके 100,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं. शी सैंग विद गुरु रंधावा, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, शी इज इन, शी इज़ लाइक 25 और समथिंग नाउ. तो वो जब आई तो मैंने बोला, अच्छा बेटा तुम्हें गाना क्या है? तो वो कहती है, मैं नाम नहीं बोल रही उसका, बट वो कहती है, मैम मुझे ना हलकट जवानी गाना है. भाई उसको, एक 12 साल की बच्ची को, उसके लाइफ गोल ये था कि उसे हलकट जवानी गाना है लाइफ में. मैंने कहा, बेटा थोड़ा एज अप्रोप्रिएट गाने गा दो. हलकट जवानी के गाने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जवानी पड़ी है जो आई भी नहीं अभी तक तुम्हारी. पहले नॉर्मल गाना सीख लो, फिर उसके बाद सुनना. तो गाइस, आई रियली वांटेड टू शेयर दैट, आई थॉट इट वाज रियली फनी, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको शेयर किया. लेकिन हम जो बात कर रहे थे जवानी से रिलेटेड, योर रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन एट द एज ऑफ 50, बाय द वे गाइस दिस इज अ स्टडी. हाँ, तो आपकी जैसे भी आपकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन है एट द एज ऑफ 50, इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू डिटर्मिन हाउ हेल्थी और वॉट काइंड ऑफ हेल्थ यू विल हैव एट द एज ऑफ 80, रादर देन यू नो ऑल दी अदर थिंग्स लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज वगैरह, वो सब तो खैर है ही. लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन है ना, बट थिंक अबाउट इट लॉजिकली भाई, रिलेशनशिप एंड शादी एंड प्यार एंड ऑल ऑफ दिस, दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स इन एवरी पर्सनस लाइफ. ठीक है, नौकरी होती है, पैसा होता है, और दूसरी होती है शादी. अब ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्टेड है तो और कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं. अगर आपकी नौकरी में स्ट्रेस हो रहा है तो दैट्स गोना शो अप ऑन योर हेल्थ. अगर आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ. एंड वी ऑल नो दैट स्ट्रेस कॉजेज हार्ट डिजीज, स्ट्रेस कॉजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टू राइज, स्ट्रेस इवन कॉजेज योर बॉडी टू रिटेन मोर फैट, बाय द वे. तो थिंक अबाउट इट, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन एंड हैविंग अ वेरी गुड हैप्पी मैरिटल लाइफ इज अ की टू ए लॉन्ग लाइफ. आई विल टॉक मोर अबाउट दिस, बट पहले इस गाने को कंप्लीट करते हैं जो हम आधा छोड़ के गए थे.

तो गाइज व्हाट आई वाज सेइंग वाज अबाउट द रिलेशनशिप स्टफ राइट. लेकिन उसके पहले बाय द वे हेल्थ की अगर हम बात करें तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दे विल स्पेंड फुल 30 मिनट्स ऑन योर अपॉइंटमेंट. सो इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज वेदर इट्स रिलेटेड टू alcohol related liver concerns, anxiety care, fibro scan, vitamin 12 deficiency, all of these testing facilities are available at Passion Health Primary Care. Schedule your appointment today. At Passion Health, you're treated like a family member, not just a patient, okay? Call 214-666-6259 to book your appointment. Passion Health Primary Care, your health is their passion, okay? So guys, jo main bol rahi thi, Passion Health Primary Care के अलावा Primary Life Partner is also, this is a very interesting line that I am quoting from Brian Johnson. Your Primary Life Partner, whoever your husband, wife, girlfriend, boyfriend, whatever it is, okay, is between, somewhere between medicine and poison. So if you have a really amazing relationship, they can either heal you or they can like destroy you. I'm not to say that, you know, you don't take accountability. You could be that person for someone else too. However, you have to figure it out. I mean, this is what, you know, you have to kind of study and study your patterns. So he also says that marital disruption jo bhi hai, marriage mein kai baar tanav aa jate hain, jhagda hota hai, ye hota hai. Maine dekha hai, bahut logon ko dekha hai. They are associated with shorter telomeres. Do you know what telomeres are? Telomeres are basically the ends of your DNA, ठीक है? And जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके DNA के जो ends हैं, DNA अपने body के जो छोटे-छोटे molecules होते हैं, ठीक है? DNA के जो ends हैं, वो छोटे-छोटे short होते जाते हैं, and they are basically the key indicator of biological age. तो अगर आपकी life में, अगर आपकी married life में या आपकी शादीशुदा वाली ज़िंदगी में बहुत ही disruption चल रही है, आपके टेलोमियर्स के जो एंड्स है ना वो ऐसे छोटे छोटे छोटे छोटे होते जाएंगे एंड दैट अल्टीमेटली डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव इन द लॉन्ग रन. सो वेरी केयरफुल, फाइंड द राइट पार्टनर, ओके, व्हेनेवर यू डिसाइड टू डू, बिकॉज इट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग यू गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड.

तो गाइज जैसे मैंने बताया था, योर रिलेशनशिप डिटर्मिन्स योर बायोलॉजिकल एज, एंड देर इज एब्सोल्यूट 100% ट्रूथ इन दैट. क्योंकि देखो भाई, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगी ना, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, मैरिज से आ रही हो या फिर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आ रही हो, इट्स गोना स्टार्ट शोइंग ऑन योर फेस. वो दिखता ही है जब आपकी शक्ल पे. जब आप स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हो ना, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है. आई मीन, मेरे साथ भी हो हुआ है, आई मीन सबके साथ हुआ है, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू. सो यू जस्ट गॉट अ वॉच आउट एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू एंटर इनटू एसोसिएशंस और रिलेशनशिप्स और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? तो गाइज, आगे बढ़ते हुए, दिस इज टोटली अनरिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, हाउ एवर इट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, सो आई हैव टू से इट. अगर आप दूसरी टाइप के स्ट्रेस में जी रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस या टैक्स प्लानिंग या फिर अकाउंटिंग, स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, ए स्टार्टअप, और इफ यू आर एन इंडिविजुअल ऑल्सो, एजी फिनटैक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशंस कंप्लीटली टेलर टू योर नीड्स. चाहे आप बुक कीपिंग की हेल्प ढूंढ रहे हैं, या पे रोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन, प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, दे कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस, एजी फिनटैक्स इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रांग financial future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. Guys, it is 9:21 on the clock. This is still your ST, Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. आप सुनते रहिए. अभी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गाने बजाएंगे, एंड देन आई विल सी यू अगेन टुमारो. वी विल टॉक अबाउट मोर स्टफ. लेकिन अगर आपको कभी कोई स्टोरी अपनी शेयर करनी है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, विच इज़ बेसिकली द थीम ऑफ आर शो, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग और एन एक्सपीरियंस, या फिर आपको किसी को पब्लिक डिक्लेरेशन करके सॉरी बोलना है, तो फील फ्री टू कॉल मी एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट फॉर यू. ओके, तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दी सॉन्ग्स एंड द कमर्शियल ब्रेक. आई एम हियर विद यू फॉर अनदर रफली अबाउट 25 मिनट्स. यस.

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा।
2: भैया आपने गेस किया कि नहीं उस मॉन्यूमेंट का नाम? उन्होंने वैसे ही बोल दिया हुमायूं का मकबरा। लेकिन भाई गाना हम न्यू स्पॉइल करेंगे ऐसे करके, है ना? ये लो।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले।
2: भाई मुझे ना बड़ा वो लगता है कि व्हेन द सॉन्ग्स आर प्लेइंग उसके बीच बीच में जो डायलॉग जो आता है ना, मूवी में जब चलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन गानों के बीच में ये डायलॉग्स मुझे नहीं पसंद, मेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो आई एम ट्राइंग टू स्किप इट फॉर यू गाइस।

0: वेरी नाइस, आई लव दैट सॉन्ग. कितना प्यारा गाना है. तो गाइज, इट इज 9:27 ऑन द क्लॉक. ये छोटा सा गाना सुनते हैं एंड देन वी गोइंग टू ब्रेक.
1: माई पेरेंट्स फ्रंट यार्ड.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
1: What?
3: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
4: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
5: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
4: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
6: तो गाइज़ हम थोड़ी देर पहले ना हम लोग बात कर रहे थे एजिंग और शादी से रिलेटेड. तो मेरी तो जैसे यू नो आई एम स्टिल सिंगल, आई एम नॉट मैरिड येट. तो मेरे को मेरे रिश्तेदार और ये सारे ना बड़े लोग बोलते रहते हैं, अरे बेटा शादी कर लो, उम्र हो रही है तुम्हारी, उम्र निकल रही है. तो मैं बोलती हूँ कि भाई क्यों, शादी करने से क्या मेरी उम्र, मैं आई स्टार्ट रिवर्सिंग एन एज? नहीं, मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, फिर भी शादी करूँ या ना करूँ. बल्कि इनफैक्ट अब तो मैं ये भी बोल सकती हूँ उस रिसर्च को सुनने के बाद कि भाई शादी करने के बाद क्या पता मेरी उम्र ज़्यादा जल्दी जल्दी स्पीड अप होके और बढ़ती जाए. यू नो मे बी माय बायोलॉजिकल एज बिकम्स अ लॉट यू नो ओल्डर देन व्हाट माय क्रोनोलॉजिकल एज इज, यू नेवर नो.

यारो दोस्तों, हीरे मोती का मुझे तो नहीं पता, उनको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन भाई रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से सस्टेन नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, ये हम सभी को पता है. लेट अस बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, देर इज नो शर्माना एंड ऑल दिस. कई बार क्या होता है ना कि आपको थोड़ा रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए. हीरे मोती तो चाहे नहीं हो, लेकिन थोड़ी बेसिक नेसेसिटीज तो जरूरत है. लेकिन हीरे मोती से याद आया गाइस, डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर एवर, दे आर मोर इरेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, विजिट तनिष्क एट फ्रिस्को. हाँ जी जनता लोग, इट इज 9:51 ऑन द क्लॉक. भाई ये मेरी आपसे आखिरी बातें हैं आज के लिए, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी. डोंट वरी, आई एम राइट हियर. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अभी आपको छोड़ के. मैं कहाँ जाऊँगी आपको छोड़ के, बिकॉज आई एंजॉय दिस सो मच. इट्स सो फन. वी गेट टू टॉक, वी गेट टू डिस्कस वगैरह वगैरह. लिसन टू लॉट्स ऑफ अमेजिंग ट्यून्स. तो स्टिक अराउंड एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ. टाटा, गुड बाय एंड हैव ए ग्रेट मंडे नाइट. आई एम गोना गो ईट सम आइसक्रीम. यू कैन गो टू बेड इफ यू वॉन्ट टू, और नॉट, और एंजॉय सम आइसक्रीम. हाँ, आई विल सी यू गाइज टुमारो. बाय बाय.

भाई इतनी जल्दी मेरा आवर थोड़ी ना खत्म होगा, अभी 5 मिनट और हैं। एक मजेदार गाना लगाते हैं, उसके बाद वो सब ऑटो प्ले वाले गाने लगाएंगे। आप ये गाना सुनिए।

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान सादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं
1: व्हाट
3: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
5: Abhe, jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
6: Panvel ho ya Dallas, safar tabhi mast. Jab gaane ho zabardast, only on Funasia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia. 104.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ek baar jo maine commitment kar di
2: to phir sirf Panacea hi sununga

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, केजीएमपी 104.9 एफएम HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTechs,
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा,
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: थे उसमें से एक रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब एक रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस एक रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की ऐसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीत वापस लाओ, लाओ।
1: गीतों से मियां तानसेन कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
4: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
3: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
4: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
5: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
6: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: अबे ओए
1: सॉरी।
0: हम ठीक हैं।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: Lights, Mike, Bollywood, Phanasia, Phanasia.
1: मैं तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
2: दिल को चुप गई।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: माय गॉड, मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं

0: from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
3: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
5: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
6: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
7: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Tuesday morning. It's the 4th of August today. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द शो।

0: Kavita Krishnamurthy's voice taking us into a quick break with some messages from our other advertisers.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
5: लिया.
4: कभी policy समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभाल लेंगे।
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

0: 105 फ्रिस्को।
1: होचो।
2: इट्स होको।
3: अरे बस भी करो यार।
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
3: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
7: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program. It is going to be very musical as we get started with it. Warm welcome on this lovely Tuesday morning. It is the 4th of August.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: अरे यार, घर मिल गया।
3: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
3: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट अजयप्रभु.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
6: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक।
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
0: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: हाय, दिस इज कोंकणा सेन शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
11: 9 8 7 6 5 4 3

0: मधु, आई लव यू। तू भी बोल।
1: मने शर्म आवे।
0: शर्म आवे? एक लपड़ दूंगी तुझे।
1: आई लव यू।
0: के
1: आई लव यू टू।

0: I'll tell you that color in a minute.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Hello Texas Parivar. Kya aapko pata hai, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
5: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
9: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
8: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: So the track we just played before the break was from Hum Aapke Hain Kaun, and the color of Madhuri Dixit's dress in that song was pink. The first one to give me the right answer was Rajni Rao, of course, expecting all the lady dollars at the Mirage Lounge. They have happy hour from Monday to Thursday from 11 in the morning till 6 p.m. featuring hookahs starting at just $24.99 and shots for only $4.99. Don't miss the fun with ladies' night and college night. The Mirage Lounge is on McKinney Ranch Parkway, because miracles happen at the Mirage. So thank you very much for all your calls. Let's go move on and get this track to you, which was requested actually a little while ago. I hope you're still listening, Mr. Requester.
10: What are you looking at? Yes, see.

0: Really, who am I to you? I get up every morning to come and do the show for you from 7 to 10. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every day from Monday to Friday. For those of you who'd like to reach me after I leave the studios, my direct number is 214-675-1754. 214-675-1754. And I'll be happy to help you with anything regards FunAsia Network, whether it's advertising, programming, any of our radio stations, whatever it is. I'll be there doing the best I possibly can for you. And right now it is 10 o'clock. Ayushi coming up.
1: This is the FunAsia Network. You are listening to FunAsia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by FunAsia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: Arre bas bhi karo yaar.
5: Arre naya restaurant hai par naam samajh hi nahi aa raha hai.
6: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
7: India ke sabse loved food brands mein se ek, Hoko, ab Frisco mein. Wahi iconic flavors, wahi unforgettable taste and varied catering options. Taste India. Relive memories.
8: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
9: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
8: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
8: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
7: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
13: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन cuisine at D1

0: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
1: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: टॉक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
4: डालस की धड़कन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो.
5: गुड मॉर्निंग एंड दिस इज योर होस्ट आयुषी. आप सुन रहे हैं फन एशिया गपशप गली, और इस गली में आप सबका स्वागत है. और कुछ अच्छे गानों और कुछ अच्छी बातों के लिए तैयार हो जाइए. आज घड़ी में बज रहे हैं 10:05. आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ है और सुरीले और खूबसूरत गानों का सिलसिला शुरू हो रहा है.

रावण का ये गाना शाहरुख खान और करीना कपूर खान का ये गाना आपके लिए लेके आई थी आपके होस्ट आयुषी। और यस, हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत सोच रही थी कि क्या बातें करूं आकर के ना आप लोगों से, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने शो में ये बात करें कि अगर इस इस जन्म में आपको मौका मिले किसी एक जगह को चूज़ करने का कि जहाँ पर आप रहना चाहते हैं, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई ऐसा कोना इस पूरी दुनिया में, तो आप वो कौन सा कोना चूज़ करेंगे, वो कौन सा देश चूज़ करेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल जिस देश में हैं यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वी हैव द बेस्ट एजुकेशन, वी हैव द बेस्ट एनवायरनमेंट, वी हैव क्वालिटी हेल्थ केयर, साफ़ हवा, करियर अपॉर्चुनिटीज़, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना कि मौका मिलता ना तो हम इस देश के इस कोने में रहना चाहते हैं। तो वो कौन सा ऐसा देश है, आप यूरोप में रहना चाहते हैं, आप इंडिया वापस जाके रहना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं? ये सवाल बड़ा ही अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा लोगों को, लेकिन होता है कई लोगों के मन में कि यार अब US तुमने इतने साल जिंदगी जी ली, चलो अब वेकेशन के लिए हम जाके थोड़े दिन स्विट्ज़रलैंड में बिताते हैं, वेकेशन नहीं एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं और यूरोप के किसी सुंदर से शहर में जाके रहते हैं। ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई मन में ख्याल है क्या आप लोगों के? अगर है तो बताइए मुझे, स्टूडियो के नंबर पर कॉल करिए, थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल एक खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए।

लुकिंग टू एड लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, तो जल्दी से जाइए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड प्रेस्टन रोड पे है फ्रिस्को में, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयर रिंग्स टू डैजलिंग नेकलेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, फाइंड द परफेक्ट पीस ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉर एनिवर्सरी एंगेजमेंट सेलिब्रेशन और सिंपली ट्रीटिंग योर सेल्फ. Experienced unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamond in Frisco. And don't forget, download the app today. जी हाँ, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का ऐप भी है, उस पर लेटेस्ट कलेक्शन मिलेगा, सारा अपडेट मिलेगा और आपको हर तरह की जानकारियाँ मिल जाएगी. सो डाउनलोड द ऐप टूडे इटसेल्फ. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं चर्चा करने की कोशिश कर रही हूँ इस टॉपिक पे कि ऐसा दुनिया में कौन सा देश है जहाँ रहने का मौका मिले तो आप वहाँ जाना चाहेंगे. सबसे पहले बैक पैक करेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे. एक सवाल तो, मतलब इस सवाल का जवाब तो हमारे पास है कि एक ऐसा देश जहाँ पर हम जाके रहना चाहते हैं, हम सब वहाँ पर अभी ऑलरेडी हैं, जिसको अमेरिकन ड्रीम का नाम कहते हैं. अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए हर कोई जो यहाँ पर है उसका एक सपना रहा होगा कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना है, जब वो कॉलेज में होगा या जब वो काम कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, राइट. यहाँ पे एक जो आपकी मेहनत है, आपका जो टैलेंट है, उसका आपको सही बोलते ना टर्नआउट मिलना, वो मिलता है इस देश में. और ज़िंदगी बदलने की जो हम कोशिश कर रहे होते हैं वो यहाँ बदल जाती है आकर के. यहाँ पे इनोवेशन है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है और हर साल दुनिया भर से लोग अपने सपने को लेकर यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, राइट. लेकिन अब तो हम US में हैं, लेकिन अगर अब आपको मौका मिले, अगर आप मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो या फिर एक मौका मिले तो किसी और जगह पर जाना हो, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो कहीं जाना हो या फिर कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, हमने सपना देखा और यहीं आकर के जितना दिन मौका मिले उतने दिन हम रहना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में है तो बताइए, कॉल करिए. और स्टूडियो का नंबर 972-235-5555 है एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स. लेट्स सी कौन है जो किस देश या किस अमेरिका के किस कोने में जाके रहना चाहता है, या फिर कोई किसी और देश से आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है मेरे साथ कि हम पहले किसी और कंट्री में थे, मिडिल ईस्ट में थे या यूरोप में थे या लंदन में थे और फिर यहाँ US में आए तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए या वहाँ क्या अच्छा था. तो आज इस पे चर्चा करते हैं और आपको सुंदर सुंदर गाने भी सुनाते रहते हैं. और आपको अगर अपनी फरमाइश करनी हो तो प्लीज़ स्टूडियो के नंबर पर कॉल करिए 972-235-5555. स्टूडियो का नंबर है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia 104.9 FM per.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
2: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110 Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस इफ अ की ओनर, पार्टनर और टॉप एम्प्लॉय पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
13: Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
15: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
18: जी हाँ, पूरा का पूरा डैलस फनीशिया सुनता है और सुन रहा है। आपकी होस्ट आयुषी आपका स्वागत कर रही है फिर से एक बार गपशप गली में, और इस गली में गप शुरू हो गई है। जी हाँ, गप मैं करती हूँ और आप मुझ मेरा साथ देते हैं उसमें। और आज हम बात कर रहे हैं अपने सपनों के देश की, जैसा कौन सा देश है जहां आप रहना चाहते हैं, जहां आप रिटायर करना चाहते हैं, तो आप मेरा साथ दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे एक कॉलर साहब हैं नवीद जी, उनका कॉल आया था एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो यस दिस इज द प्लेस वेयर वी वांट टू बी। अगर हम एक आइडियल लाइफ का अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सपना देखते हैं तो वो यही देश है जहां पे हम अभी हैं, अमेरिका। और यहां पर सपनों को सही उड़ान मिलती है, यहां पर जिस कदर की मेहनत आप करते हैं उस मेहनत का फल इस शहर में आपको मिलता है, इस देश में आपको मिलता है। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वॉन्ट्स टू बी। सो यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपने लेकर इस देश में आते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं, और उन सपनों को बोलते ना सही, उनकी सही जगह मिलती है यहाँ पर। आप इस देश में आकर के अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बेस्ट सोच सकते हैं। तो आज का यही सवाल है और आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां आप जाना चाहते हैं या जहां से आप आए हैं, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो और वहां से आप यहां पर आए हो, और आप क्या फ़र्क देखते हैं US की लाइफ में और उस देश की लाइफ में, इस चीज़ के बारे में थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। फिलहाल आपको लेकर के चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगले गाने की जो फरमाइश आई है ना, वो आई है हमारे एकदम सबसे यंगेस्ट वाले कॉलर की तरफ से। सो निजान ने मुझे फ़ोन किया है जिनकी उम्र है 8 साल और वो मेरा शो सुन रहे हैं और उनको सुनना है धुरंधर का ये मज़ेदार सा गाना। सो दिस वन्स फॉर यू निजान।

जवान फिल्म का ये गाना शाहरुख खान है इस फिल्म में और उनके साथ नयनतारा हैं। तो यस, चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी ही अच्छी चर्चा चल रही है शो पे। किस देश में आप जाके रहना चाहते हैं? आप अमेरिका तो आ गए हैं, दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री में, और यहाँ पे अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं और उन ख्वाबों को उड़ान भी मिल रही है। बट अगर एक मौका मिले तो आप कहाँ जाके रहना चाहेंगे? तो अभी मेरी एक कॉलर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। उनका नाम है टीना, एंड टीना ने ये बताया कि रिसेंटली शी इज़ रीडिंग मोर अबाउट जापान एंड शी वॉन्ट्स टू गो। एंड जापान मतलब हम लोग हिंदी में जापान बोलते हैं, उसे जापान, या सो शी इज़ रीडिंग अबाउट जापान एंड शी वॉन्ट्स टू गो एंड लिव देयर। And the reason she gave was beautiful. She said the kind of life they live, like you know, the life expectancy or healthy life or cleanliness, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मुझे बताए उसके कारण वहाँ वो जा कर के एक बार रहना चाहती हैं, उस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। वो अमेरिका में हैं, बट हाँ, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत देखते हो और बहुत पढ़ते हो तो इच्छा होती है ना कि वहाँ जा कर के एक बार उस ज़िंदगी को हम जिएं, एक बार हम देखें। तो ऐसा ही टीना ने बताया। एंड मैं अभी टीना से भी शेयर कर रही थी फ़ोन पर, दैट यू नो आई वॉज वॉचिंग अ रील ऑन इंस्टाग्राम वेयर इन There was a white socks test that a girl did since we were talking about cleanliness, ki kitna saaf sutra hai wo desh. So that girl was walking on the street with her white socks on and she showed us ki kaise wo moja bilkul socks jo hai bilkul saaf tha, safed tha. And she took a full round of that street. It was the main downtown in Japan. Koi city thi, mujhe naam yaad nahi hai, but haan. And then after that full circle, she took off her socks and showed it to us and it was as white as it was when she wore it. So तो इस तरह की साफ सफाई वहाँ पर है। सो दैट इज़ वॉट यू नो, जब उन्होंने ये स्टोरी शेयर की, मतलब स्टोरी इन द सेंस अपनी अपना थॉट शेयर किया, शी वॉन्ट्स टू गो एंड स्टे देयर एंड एक्सपीरियंस इट वॉन्ट्स, तो मुझे लगा कि यार यस, मैंने भी ऐसा कुछ देखा था। तो चलिए, टीना ने तो बता दिया, अब आप भी मुझे बताइए कि आप कौन से ऐसे देश में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, जाना चाहते हो, बचपन से मन हो आपको। जैसे यशराज की फिल्म देख करके हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं ना, जाके हमें स्विट्ज़रलैंड में रहना है, देखना है, जिनको मोहब्बतें करनी है, DDLJ जिन्होंने बार बार मेरी देखी हो, मैं नहीं गई हूँ, मुझे जाना है, आई हैव टू डू इट। सो और मैं जाके रहना चाहती हूँ। मैं जब भी मेरी कहीं बात होती है ट्रैवल करने की, तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे जाके कुछ दिन उस जगह पर रहना है, वहाँ की लाइफ जीनी है। वेकेशन इज़ डिफरेंट, बट जाके थोड़े दिन ना एक्सपीरियंस करना है। सो ऐसा अगर आपका भी कोई मन में इरादा है, कुछ चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए मुझे, कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशिया 104.9 FM पर, और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं, टीना की फरमाइश पे गाना। उसके पहले एक ज़रूरी जानकारी दे दें आपको, अगर आप किसी भी तरह के कार या ट्रक एक्सीडेंट में या स्लिप या फॉल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी मदद करने के लिए अटर्नी उमर ख्वाजा हैं। ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर You are compensated. और सबसे खास बात यह है, you don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046. Or you can visit attorneyomar.com. चलिए अगले गाने की तरफ, बहुत ही प्यारा सा गाना टीना की फरमाइश पर।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi mana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगी है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: कितने आदमी थे?
10: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
11: FM फनीशिया, और आपका स्वागत है गपशप गली में। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी की। वैसे तो ये गली जो है वो मीठू की है, पर इसमें मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, मीठू नहीं है, वो ट्रैवल कर रही हैं, छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एंटरटेन करने मैं आ जाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा शो पसंद आ रहा हो, मेरी बातें पसंद आ रही हों। और आज हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट, कि ये जनरली लोगों का सपना अमेरिका आना होता है। अमेरिकन ड्रीम इज़ द ड्रीम, बट नाउ सिंस वी आर लिविंग दैट ड्रीम, Do you have a dream to, live life in some other country? Maybe temporarily, maybe for some time, and see हाउ थिंग्स आर. बहुत फैसिनेट हो जाते हैं ना हम वीडियोस देख के, मूवीज देख करके. तो ऐसा कोई देश या ऐसा कोई शहर है जहां आप जाके रहना चाहते हैं, जहां की लाइफ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये गपशप हम मार सकते हैं और इस बारे में चर्चा कर सकते हैं. बस आपको स्टूडियो के नंबर पर कॉल करना है 972-235-5555 पे. और रिसेंटली मैं एक ऐसे ही देश गई, 18 साल बाद गई थी, बहुत छोटी सी कंट्री है, भारत के पड़ोस में है, वहाँ गई थी. वहाँ बहुत बदलाव देखे मैंने और ऐसा लगा ना कि रिटायरमेंट के बाद शायद इसी देश में कहीं पर कोने में एक अच्छा सा प्यारा सा पहाड़ों में घर देख करके हम रह सकते हैं. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ज़रूर बताएंगे आपको. लेकिन फ़िलहाल एक सुंदर सा गाना सुनाते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि वो कौन सा देश है, भारत का पड़ोसी देश पहाड़ों में. बताइए कौन सा देश है, गेस कर सकते हैं क्या आप? फिलहाल के लिए ये प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए.

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा है इस फिल्म में. परम सुंदरी है फिल्म का नाम. चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल और स्टार्टअप और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी services. They help keep your finances organized, compliant and future ready. Trusted hai, efficient hai aur committed hai aapke success ke liye. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. You can call 469-942-9888. I repeat, 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. आप कॉल करके फरमाइशें दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ और अगर आपको गाने अपने पसंद के बजवाने हो तो कॉल कर सकते हैं मुझे. मैं फ़ोन उठा रही हूँ, रिक्वेस्ट भी ले रही हूँ. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और आज चर्चा चल रही है, अगर इस देश में आप आ गए हैं और अपना अमेरिकन सपना पूरा कर लिया है तो ऐसा कोई ऐसा देश है आपके मन में या जहन में, कहीं वीडियोस देख के, कोई फोटोज़ देख के, कोई मूवी देख के आपको लगता है कि यहाँ जाके कुछ दिन रहते हैं. तो अभी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे थे. सो वी वेंट टू आर नेबरिंग कंट्री नेपाल, एंड आई वेंट आफ्टर 18 years. सो सम पार्ट ऑफ माई फैमिली स्टेज इन नेपाल, एंड वहाँ जाने के बाद मैंने जो चेंज देखा है वहाँ पर, जो कि कुछ पिछले 2-3 साल लोग बता रहे थे, जब हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ के जो गाइड्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो लोग सब बता रहे थे कि जो बदलाव आया है वहाँ पर वो बहुत अच्छा है. तो शहर इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा. एक तो पहाड़ों के बीच में, काठमांडू वैली के बीच में शहर है. तो हम ऐसे सारे कज़न्स बैठे हुए थे और ऐसे ही हमारे वहाँ पे हमारी मौसी रहती हैं, तो हम सोचे कि हम लोग सब बात कर रहे थे कि यार रिटायरमेंट के बाद थोड़े बुढ़े हो जाएं, जब बच्चे बच्चे चले जाएं तो बड़ी अच्छी जगह है ना, इतनी साफ़ सुथरी, इतना शांत, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वेदर भी अच्छा रहता है. एंड येस, फिर इन द काठमांडू वैली खाना अच्छा मिलता है. एक छोटा सा घर लेकर के ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा घर, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, वैसे भी हेल्प मिल जाती है वहाँ पे. तो बस वहाँ जाके ना सारे कज़न्स आसपास साथ में रहेंगे. हम 2-3 लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, बट ये तो सारे सपने ही हैं जो हम देखते रहते हैं. बट हाँ, एक्चुअली में अगर हम काठमांडू शहर की बात करें तो बहुत बदल गया है. हम लोग बचपन से वहाँ जाते रहते हैं, जाते रहे हैं छुट्टियों में, बट दिस टाइम वी सॉ द रियल चेंज इन दैट स्मॉल कंट्री, एंड दैट चेंज इज़ फैंटेबुलस. बहुत ही खूबसूरत हो गया है. जितना खूबसूरत वो जोग्राफिकली है वो देश, मुझे लगता है कि अच्छी गवर्नेंस के कारण, अच्छे लोगों के कारण शहर साफ़ सुथरा और सुंदर भी हो गया है. तो ये मेरा एक ऐसा छोटा सा हमारे कज़न्स की चर्चा थी जो मैंने आपसे शेयर करी. तो आप ही बताइए ऐसा कोई देश. हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ बसने का ही सोच लेते हैं, कभी नहीं बोलते कि छुट्टियों में जाएंगे, रह के थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ का लोकल जगह का खाना पीना खाएंगे, ऐसा वाला मेरा सोच है. तो अगर आपकी भी ऐसी कोई सोच है, कोई जगह है, कोई शहर है तो बताइए. फिलहाल ये गाना सुनिए और स्टूडियो का नंबर याद दिला रही हूँ, 9722355555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, फनेशिया 104.9 FM पर.

सो हियर वॉज दिस गेरुआ सॉन्ग. जी हाँ, शाहरुख खान और काजोल, दिलवाले का ये गाना. प्रीतम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज. और चाहिए क्या जीवन में, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति, इसी की तो कामना करके बैठे रहते हैं हम लोग, है ना. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले आपको हम बता दें कि हम यहाँ बने रहेंगे आपके साथ. हम मतलब हम, सिर्फ मैं यू नो, बिहारी वाला हम. मैं आपके साथ 12:30 बजे तक हूँ और आपको एंटरटेन करते रहूँगी. आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी फरमाइश दे सकते हैं. और हमने बहुत ही खूबसूरत चर्चा की अलग अलग देशों के बारे में, जहाँ आप जाके रहना चाहते हैं. तो एक और ऐसे ही देश के बारे में मुझे पता लगा है अभी फ़िलहाल, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी. लेकिन ब्रेक के बाद अगले गाने की तरफ आपको लेके चलेंगे. इस कमर्शियल ब्रेक के बारे में छोटा सा ट्रेलर दे देती हूँ, कौन सा खूबसूरत अच्छा गाना है वो.

0: कुछ याद आया, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत गाना है, हमारी कॉलर की फरमाइश पे आया है, मरिया ने फरमाइश की है इस गाने की। गाना सुनेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए फनीशिया गपशप गली में। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और बहुत सारी गपशप हो रही है। अगर आप भी किसी ऐसे देश गए हैं या जाना चाहते हैं, अमेरिका आके अमेरिकन ड्रीम पूरा कर लिया है और अब सोच रहे हैं कि किसी और देश में जाके थोड़े दिन बिताते हैं, एक हॉलिडे होम ले लेते हैं, तो वो कौन सी कंट्री होगी, कौन सा है वो देश जहां आप जाना चाहेंगे, कॉल करिए और बताइए मुझे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर शो को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए फनीशिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारा गिव अवे भी है, तो सुनते रहिएगा, बने रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
2: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
3: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
4: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: Hello and welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया पर, और ब्रेक के बाद स्वागत तो कर दिया मैंने और आपके कॉल से दिल खुश हो गया मेरा। इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिल रहे हैं ना, सबकी कौन कहाँ कैसे रहना चाहता है, उनमें से कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर

आता है, उनमें से कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। एंड पता है आपको चर्चा क्या आज चल रही है हमारे रेडियो स्टेशन पे आज? अगर आपने अभी सुनना शुरू किया तो बता देती हूँ, चर्चा चल रही है ऐसा कौन सा देश है जहाँ आप जाकर के कुछ समय बिताना चाहेंगे, रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, या फिर यू नो अपनी लाइफ का अब जब सारी हासिल खत्म हो गई है जिंदगी की, बच्चे सेटल्ड हैं, तो ऐसे कौन सा देश है जहाँ आप जाना चाहते हैं? अपने सपनों के देश में तो हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनका एक सपना होता है, अमेरिकन ड्रीम, जिसको हमने पूरा किया यहाँ आकर के। लेकिन विच इज़ द कंट्री यू वॉन्ट टू लिव इन, विच इज़ द कंट्री विच इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन, विच इज़ गुड फॉर योर रिटायरमेंट, और यू नो गिवन एन अपॉर्चुनिटी यू गो एंड स्टे देयर। तो इन सब बातों पर चर्चा चल रही है, बहुत प्यारे प्यारे किस्से कहानियाँ सुनने को मिल रहे हैं। अभी हमारे पास एक हैं खान, मिस्टर खान, उनका कॉल आया था एंड ही said you know that he has a holiday home in Portugal, और वहाँ पर उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनका एक वहाँ पर अपार्टमेंट है जहाँ वो जाते हैं, उनका परिवार जाता है और रहता है। मज़ेदार बात यहाँ पे है कि खाना बड़ा बढ़िया मिलता है वहाँ पर, और वहाँ के घरों में किचन नहीं है, मोस्टली पीपल ईट आउटसाइड, दैट दिस इज़ वॉट ही टोल्ड मी, एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज टू नो दिस। और बहुत ही लीजर लाइफ है, सुकून से लोग रहते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है शहर, सुंदर है, साफ है, फ्रेंडली है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, लोग दूर से भी आते हैं शहरों में काम करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, भले लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगे ट्रैवल करने के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा शहर है, एंड आई डिड नॉट नो कि किचन नहीं है वहाँ पे, वरना हम भी चले जाते, खाना बनाने से छुट्टी मिलता हमको तो यस, वन एक्सपीरियंस दैट ही शेयर्ड, एंड ऐसे ही और सारी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, जितना हो सके शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट एक पोर्टुगल वाला मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, बिकॉज किचन नहीं था, मतलब एक औरत को और क्या चाहिए, हम औरतों का यहाँ पे एक ही दुख है, और कोई दुख नहीं है, मतलब सारे सुख ही सुख हैं, बस एक ही दुख है, चूल्हा चौका बर्तन जो करना पड़ता है। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलती हूँ, मेरी तो चलती रहेगी गपशप आप लोगों के साथ, बट हाँ अगले गाने की तरफ, लेकिन उसके पहले ना एक ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ, बिकॉज हमारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट यू थिंक, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू जब आप उनके पास विजिट के लिए जाते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन हमारे पास एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पे हर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम and they give you time, because at Passion Healthcare you're not just a patient, you're family. So aapke liye, aapke parivar ke liye, and hamare community ke health ke liye Passion Health Primary Care hai. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibro scan or alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and rest of the things. So you know these all things are available at Passion Healthcare, so you can schedule your appointment today, and you can call them on 214-666-6259. To apna appointment book karne ke liye aap call kariye, number phir se bata rahi hoon, 214-666-6259 hai. Passion Health Primary Care, your health is our passion. चलिए जल्दी से अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश आई है मारिया की तरफ से।

शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की कर रहे हैं, हाउस वार्मिंग की कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग एंड ऑल द लिटिल डिटेल्स, हियर इज वन नेम यू शुड नो, वेनेसा इवेंट्स। दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड अ ब्यूटिफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस catering exclusively by renowned Pasera Grand. So you can focus on making memories while they take care of rest. Call Hari Pasera today at 469-442-8770. Venisa Events, your celebration partner. चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। इस गाने की फरमाइश आई है पूनम जी की तरफ से, और जब वो मेरा सवाल सुनी ना कि आप कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, दुनिया के किस कोने में जाके रहना चाहते हैं, तो उनके मन में एक ही ख्याल आया, वो अपने घर में रहना चाहती हैं। क्योंकि भैया अब वो ना अपना घर एंजॉय करना चाहती हैं, बच्चों को घर से भगा दिया है, मतलब कॉलेज, स्कूल, शादी ब्याह जो भी है वो कर दिया है, और अब वो अपनी बैचलर लाइफ को जी रही हैं अपने पति देव के साथ। जब मन उठो, जब मन खाओ, डेट्स पे जाओ, मूवीज पे जाओ, लाइफ को इंजॉय करो। और सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुक्ति पाने के बाद उनको ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो भाई चलिए इसी बात पे उनके लिए खूबसूरत सा गाना बजा देते हैं लता जी की आवाज़ में।

Diamonds aren't just forever. They are even more irresistible during Tanishq's Festival of Diamonds. Enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. तो भैया इस सीजन का सेलिब्रेशन जो है वो टाइमलेस है तनिष्क के साथ, तो जाइए और तनिष्क होकर के आइए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. फ्रिस्को में है तनिष्क का ये स्टोर. अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के, हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड नहीं कहूँगी, हिंदी सिनेमा के और म्यूजिक लवर्स के बहुत ही खास, क्योंकि आज हम उनको याद कर रहे हैं कैसे लेजेंड को, जिनकी आवाज़ में खुशी भी थी, शरारत भी थी और दर्द भी था. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार की, किशोर दा की. आज उनका जन्मदिन है 4 अगस्त, और 1929 में उनका जन्म हुआ था, तो कैसे नहीं मनाएं उनका जन्मदिन. आज कुछ खूबसूरत प्यारे गाने किशोर दा के चलाएंगे हम अब अगले घंटे तक और आपको एंटरटेन करेंगे. तो किशोर दा के प्यारे गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे और फरमाइशें दीजिए अपनी 9722355555. किशोर दा के गानों का सिलसिला शुरू हो रहा है उनके जन्मदिन पर. तो ये रहा पहला गाना.

0: तो आज हम मना रहे हैं जन्मदिन आभास कुमार गांगुली का, 4 अगस्त 1929 को उनका जन्म हुआ था। आभास कुमार गांगुली हमारे किशोरदा, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, खंडवा में। और उनका ना बचपन से ही सपना था कुछ अनोखा करने का, और एक ऐसे ही वो कलाकार थे। और वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, एक्टर भी थे, कंपोजर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और ज़िंदगी के कई सारे किरदार उन्होंने निभाए हैं। और उनके खूबसूरत गाने आज भी हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। यू नो, अगर खुशी का माहौल आए, मस्ती वाले गाने आए, दुख वाले गाने आए, प्यार भरे गीत आए, सब किशोरदा के गाने सुनते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन से ही उनका एक अलग अंदाज था, उन अलग अंदाज के इंसान थे। उनके भाई अशोक कुमार जी, वो पहले से बॉलीवुड में थे, और एक्टिंग और सिंगिंग का शौक़ उनके भाई को था, किशोरदा को था। तो वो आए बॉम्बे अपने भाई के पास, और उन्होंने पहले कुछ फिल्में की अशोक कुमार के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे असली पहचान बनी उनकी आवाज़ से, उनके गानों से, और उनके गाने आज भी हमारे साथ हैं। तो किशोर कुमार के बारे में कुछ बातें करेंगे, उनके प्यारे प्यारे गाने सुनेंगे। खूबसूरत सा गाना मैंने अभी आपको सुनाया है, और गानों की फरमाइश आना शुरू हो गई है मेरे पास। जी हाँ, कॉल आना शुरू हो गई हैं, गाने लाइनअप कर लिए मैंने, पर फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। अगर आप भी अपने पसंदीदा गाने सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज़ में, तो ज़रूर कॉल करिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, और फिर आपको वो सारे गाने सुनाएंगे जो हमने लाइनअप करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ब्रेक के बाद एक और चीज़ है, गिव अवे, तो प्लीज़ बने रहिएगा, गिव अवे के लिए तैयार रखिएगा, फ़ोन को ज़ोर से पकड़ के रखिएगा। फिलहाल ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं फनीशिया 104.1।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास, 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से, नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
18: लिया।
17: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
18: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
19: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में, और ये गली है मीठू की। मैंने अपनी जगह बना ली है थोड़े दिनों के लिए और आपको एंटरटेन कर रही हूँ अपनी बातों के साथ और कुछ खूबसूरत गानों के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पर चल रहे हैं। जी हाँ, ये अगला पूरा एक घंटा डेडिकेटेड है किशोर दा को। आज उनका जन्मदिन है 4 अगस्त, और इसी खुशी में हम सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट ले रहे हैं। तो आप कोई किशोर दा के प्यारे गाने सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए। मेरे पास काफ़ी गाने लाइन अप हैं, लेकिन अभी भी स्कोप है, तो टाइम है, इसलिए आपके पसंद के गाने बजा सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। अगला गाना ये रहा, बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म कुदरत से, 1981 की फिल्म है, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी है इस फिल्म में, और ये रहा वो गाना।
20: से कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते,
21: मगर जी नहीं सकते

There was this beautiful song किशोर दा की आवाज में, और आज किशोर दा का जन्मदिन है और हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पे। आप अपने पसंद के गाने मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर प्ले करूँगी और सिर्फ उनके गाने अगले 1 घंटे तक। चलिए जल्दी से आपको एक जानकारी देते हैं, फिर अगले गाने की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे है जो कि सेलिब्रेट हो रहा है IIT के आनंद बाज़ार में। It's Anand Bazaar 2026 on. It's completely indoors and free for everyone. Enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping, sab kuch rahega. So bring your family, bring your friends and be part of North Texas' biggest Indian Independence Day celebration. IANT ka Anand Bazaar 2026 aap yahan ja karke इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए अगले गाने की तरफ चलती हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बहुत सारे गाने लाइंड अप हैं। तो ये अगला गाना किशोर कुमार और मधुबाला जी का।

पका योका पका ओ टिडिडिडि पक पक मिनी मिनी मिनी मिनी यूडडे बगा लोगा बगा।

झुमरू फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, मजेदार गाना और यूटलिंग करते थे किशोर कुमार, सबको पता है। मतलब उनके बारे में क्या ही बताएं, सारी बातें तो हमें पता ही है, पर बहुत सारे ऐसे किस्से हैं उनके जो मैं कोशिश करूंगी आप तक लाने के। चलिए अगले गाने की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूं, ये तो मेरा काम है आप तक ये मैसेजेस लाना। तो बात करते हैं चौक टॉक के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की। हाँ, तो इस रक्षाबंधन फनेशिया और चौकटो कैसिनो एंड रिजॉर्ट एंड्योरेंट वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर, एंड यू कैन सेंड देम 1 मिनट का वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर है 214-837-7147, एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज भी। सो एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटो कैसिनो एंड रेस्टोरेंट एंड्योरेंट। फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आर फनेशिया रेडियो सोशल मीडिया पेज चौक टॉक कैसिनो एंड द रिजॉर्ट ड्यूरेंट विथ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। तो भाई आपकी उम्र 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर एक अच्छा मौका है यू नो ब्रदर सिस्टर के अनफॉरगेटेबल मेमोरी को शेयर करने का और इनाम जीतने का। चलिए अगले गाने की तरफ लेके चलती हूँ। इसकी भी फरमाइश आके काफ़ी देर से मेरे पास थी और ये गाना आप लोगों के लिए किशोर दा की आवाज़ में।

तो ये था एक और बड़ा ही मजेदार सा गाना किशोर दा की आवाज में। और वक्त हो रहा है लंच का, पेट में हो रही है गुड़गुड़, लग रही है भूख। मैं तो नहीं जा सकती हूँ, पर आप जा सकते हैं पेज 3 ईटरी। फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स टू फ्लेवरफुल चाट, जबान लड़खड़ा रही है मेरी। फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स टू फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, इफ यू स्टिल हैव एन एक्सपीरियंस पेज 3 एट हब 121, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा खाना है, मैं गई हूँ यहाँ पर, अमेजिंग खाना है यहाँ का। दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, वेदर इट्स ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट या फिर एक फूडी मीटअप है। पेज 3 लेकर के आया है परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी और वाइब्रेंट वाइब्स। जाइए यहाँ पर और यहाँ का खाना एंजॉय करिए। यू कैन विजिट पेज 3 ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट page3eatery.com। सच बता रही हूँ, बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। सो यू नीड टू ट्राई वंस, इफ यू आर अ फूड लवर यू हैव टू ट्राई दिस प्लेस। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। बहुत प्यारा सा गाना लाइन करके रखा है मैंने आपके लिए, किशोर दा के गाने चल रहे हैं अभी हमारे रेडियो स्टेशन पे। और अगला गाना ये रहा।

0: गारे गारे
1: ये गरबड़ जे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये अमक बटला
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जे ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार अमक जोड़े का नहीं।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: चतुर ना।

0: पड़ोसन फिल्म का ये मजेदार सा गाना था आप लोगों के लिए, किशोर कुमार की आवाज में, और खुद भी वो इस फिल्म में हैं, सायरा बानू हैं, सुनील दत्त हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लासिक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, और किशोर कुमार का अनोखा अंदाज जहाँ पे उनके गानों में मज़ा है, मस्ती है, आवाज़ में दर्द भी है और रोमांस भी है। तो उन्होंने हर किसी के गाने गाए हैं और उनके किस्से तो हमने सुने हैं ना, किशोर कुमार के बहुत सारे अजीबोगरीब किस्से हैं। एक किस्सा है जिसमें उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार। तो वो अपनी प्राइवेसी को शायद बहुत इंपॉर्टेंस देते थे ऐसा कहते हैं, और एक बार एक प्रोड्यूसर उनसे मिलने घर पर आए तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड ही लगवा दिया। वो बार बार बिना बुलाए आ जाते थे और बोर्ड ही लगवा दिया कि भाई बिवेयर ऑफ किशोर कुमार, और कभी कभी विजिटर्स को अजीब तरीकों से कंफ्यूज कर देते थे। एक मशहूर किस्से के मुताबिक जब कोई उनसे मिलने आता और बिना बिताए घर पहुंच जाता तो किशोर दा उस समय ना छुप छुप के अजीब गरीब आवाज़ निकाल के, फनी आवाज़ें निकाल के, अजीब हरकतें करके उन्हें हैरान कर दिया करते थे। इतने बड़े स्टार थे, इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, फिर भी उनके ऐसे ऐसे किस्से लोगों को परेशान करना और तरह तरह की आवाज़ें निकालना, मतलब कहा जाता है कि उनका एक बड़ा ही प्लेफुल साइड था, मस्तीखोर वाला साइड था। और उनकी आवाज़, उनके ये किस्से कहानियाँ आपके साथ हम आज बांटते रहेंगे फनीशिया 104.9 FM पे। स्टूडियो से आयुषी आपकी होस्ट आपको कुछ खूबसूरत गाने सुना रही है गपशप गली में, और ये गली मीठू की है पर इसमें मैंने अपनी जगह बना ली है कुछ दिनों के लिए। फ्राइडे तक मैं आपके साथ हूँ और 10 से लेके 12:30 बजे तक आपको खूबसूरत गाने सुनाते रहूँगी। अगर आप मुझे फनीशा के बाहर भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से। वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे मिनी व्लॉग्स डालते रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ अपनी शुरंकी रानी के साथ। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
13: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
18: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.

0: from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
2: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.
3: FM Fun Asia, आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में और आपका स्वागत है ब्रेक के बाद. यहाँ पे चल रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने, क्लासिक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स. किशोर दा की आवाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं आज, उनको याद कर रहे हैं और उनके गाने सुन रहे हैं, आपकी फरमाइशें ले रहे हैं. अगर आप भी अपनी फरमाइश देना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. तो घड़ी में बज रहे हैं 12:06 और मुझे लगता है कि अब मुझे अपना गिव अवे टाइम शुरू कर देना चाहिए. जी हाँ, आपके लिए गिव अवे रेडी है सैनिटली रेस्टोरेंट की तरफ से और आप यहाँ जीत सकते हैं कोई भी डोसा अपने चॉइस का विथ प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैंस इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. एंड इंडियन फूड 100% प्योर वेजिटेरियन है और ऑथेंटिक फ्लेवर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर. क्रिस्पी डोसा मिलेगा, फ्लफी इडली मिलेगी, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स मिलेंगे और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी मिलेगी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विथ जैन फ्रेंडली ऑप्शन. तो विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन. तो चलिए हम अपने विनर्स को चूज करेंगे. फोन उठा लीजिए, बिल्कुल तैयार रहिए और सवाल पूछेंगे आपसे. स्टूडियो का नंबर बता रहे हैं फिर से 9722355555, जिसके पास नहीं है उसके लिए, और आपको कॉल करना है और ये गाना सुनने के बाद मुझे जवाब देना है. जवाब जवाब के पहले सवाल. सवाल ये है कि ये किस फिल्म का गाना है. आवाज़ किशोर दा की है लेकिन मूवी का नाम आपको बताना है और जो हमारे पहले कॉलर होंगे उनको मिलेगा ये इनाम. तो गाना आपके लिए ये रहा, फोन उठाइए और कॉल करिए.

Did you know your family history can help predict your health risks? Knowing your family's history of conditions like diabetes, heart disease, or certain cancers help your healthcare provider recommend the right preventative screenings. This was today's health tip, which is brought to you by Passion Health Tips. तो अपनी फैमिली हिस्ट्री को जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं ज़रूर शेयर करें. सेहत सबसे ज़रूरी है, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही खूबसूरत गाने चल रहे हैं, किशोर दा के गाने चल रहे हैं और सबके कॉल आ रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है एंड दे आर इन्जॉइंग दिस यू नो ये सेगमेंट हमारे शो का जहाँ पर किशोर दा के गाने चल रहे हैं. और अभी हमारे कॉलर का फ़ोन आया था मिस्टर आर के का, जिन वो अपना बर्थडे शेयर करते हैं किशोर दा के साथ. सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आर के. एंड प्रेसिडेंट ओबामा का भी बर्थडे है आज, उन्होंने मुझे बताया, मेरे ध्यान में नहीं था ये. सो यस, विशिंग हिम ऑल्सो वेरी हैप्पी बर्थडे. तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की तरफ चलते हैं. इस गाने की फरमाइश भी आरके की तरफ से आई है, तो आपके जन्मदिन पे ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए.

तो बस किशोरदा के प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, शराबी फिल्म का ये गाना था। और अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। जी हाँ, घड़ी में बज गए हैं 12:24। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, कल फिर 10 बजे मिलूंगी। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातें करके और आप लोगों के साथ स्टूडियो में इंटरेक्ट करके और गाने सुन के और आपकी फरमाइशें लेकर के। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई हैंडल इज़ बिहारी मॉम इन अमेरिका। हम बिहार से हैं, पटना से हैं और डैलस में हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आयुषी भूषण के नाम से। वहाँ पे हम मिनी व्लॉग्स डालते रहते हैं और ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की गपशप करते रहते हैं, अपना ओपिनियन देते रहते हैं। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए वहाँ पर। फिलहाल आज के लिए विदा लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल बी बैक टुमारो एट 10 AM। अगला गाना भी किशोर कुमार का है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना लेकर के आ रही हूँ। हमारे कॉलर की फरमाइश पे, कमल जी की फरमाइश पे है ये एक खूबसूरत सा गीत। आज के लिए विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।

0: अभी तक नहीं मना। बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं, URA Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: URA can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
2: URA Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: Don't let debt ruin your life. Visit URA.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
10: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
14: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

Hello, Dallas. Good afternoon. And you're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phoneesha 104.9 FM पर. So, आज का theme है, what's everyone talking about? मतलब जो आजकल हर WhatsApp group, Instagram reel, office lunch break और family dinner में discuss हो रही है. And the viral videos, AI का नया magic, cool gadgets और वो चीज़ें जो हम सच में पैसा वसूल है. अगर आप भी scroll करते करते कभी सोचते हैं कि ये सब trend कैसा बन जाता है, तो आज का show बिल्कुल आपके लिए. Music के साथ gossip भी और tech भी. So stay right here, Dallas.

are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM पर. अगर आप अपनी वेल्थ को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो माई टाइम इक्विटी है आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर. CPA सुधीर पाई के साथ पाइए प्रोफेशनलाइज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस. आज ही विजिट कीजिए mytimeequity.com या कॉल कीजिए 4697021272 पर. माय टाइम इक्विटी, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड ग्रो कॉन्फिडेंटली. एंड हियर यू गो फॉर योर नेक्स्ट ट्रैक.

लेट्स टॉक व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का मूड भी ना हर वीक चेंज होता है. अभी ट्रेंड चल रहा है सिंपल, रिलेटेबल और लो एफर्ट लुकिंग रील्स का. मतलब ओवर एडिटिंग से ज्यादा नेचुरल मूवमेंट्स लोगों को कनेक्ट कर रही है होती है. फन वन टेक वीडियोज, फैमिली रिएक्शंस और नॉस्टैल्जिया कंटेंट भी काफी वायरल हो रहा है. यू गाइस नो हम यूट्यूब कितना देखते, दूसरों की फैमिलीज में क्या चल रहा है वो सब हमें पता है. हाँ, ये तुम्हारी मम्मी है ना, ये तुम्हारी पापा है ना, वी नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर जस्ट मेकिंग इट अ कंटेंट. एंड एक बात नोटिस की है, अब कैप्शंस भी पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं. तो अगर आपको कंटेंट क्रिएटर हो या बस वीकेंड पे रील बनाते हो, याद रखो परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, रिलेटेबल होना ज़रूरी है. वैसे आपके एक्सप्लोर पेज से सबसे ज़्यादा किस टाइप के वीडियोज़ आते हैं? मेरे एक्सप्लोर पेज से सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं मेकअप की, बिकॉज आई एम इन सो लव विथ मेकअप एंड आई लव गेटिंग रेडी. सो मैं हमेशा देखती हूँ गेट रेडी विथ मी रील्स. सो इफ़ यू डूइंग इट, गेट रेडी अपने आप के लिए रेडी होइए, नॉट बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड या कुछ करना है. ओ आई नीड टू बी दिस, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू एन्जॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड गेट वायरल.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite
7: 110 Fort Worth, India Bazaar. The people's store. Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu. Front page ka to pata nahi, par tera page 3 mein hona meri guarantee hai. Kaise? Page 3 eatery? No, not another restaurant again. Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite. Mmm, matlab great food, great drinks, and great company.
5: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
11: Oh, Omar Khwaja.
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanesia 104.9 FM. Par. So let's talk about viral things like viral videos, internet pe. Basically, viral, kyunki aajkal hum kuch bhi kar rahe, log bas chahte hai wo viral ho jaye. Kabhi kabhi internet hume hasa hasa ke pagal kar deti hai. Aajkal ek trend bahut chal raha hai. Log AI generated videos ko real samajh lete hai. Sometimes even I do that. To isliye maine ye baat kahi hai. Haircut मशीन हो या इम्पॉसिबल स्टंट्स, पहले शॉक लगता है और फिर पता चलता है अरे ये तो एआई था. इसीलिए ऑनलाइन जो भी वायरल दिखे उसको इंस्टेंटली बिलीव मत करो, बिकॉज मैं ऐसे करती थी. थोड़ा उसको चेक करना भी स्मार्टनेस की काम होती है. वैसे वायरल वीडियोस का असली मजा कमेंट सेक्शंस में होता है. कभी वायरल वीडियो से ज़्यादा फनी कमेंट्स होते हैं. वीडियो तो वायरल हो जाती है पर उसके कमेंट्स भी कभी कभी वायरल हो जाते हैं.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phoenicia 104.9 FM पर. So अब बात करते हैं shopping की. हर नया gadget लेना जरूरी नहीं होता है. कभी कभी एक अच्छा power bank, quality wireless earbuds या smart watch ही daily life को easy बना देता है. Trend के पीछे भागने से better है अपनी need के हिसाब से खरीदना. Of कोर्स, क्योंकि हम ट्रेंड के पीछे पीछे भागते अपनी नीड को इग्नोर कर देते हैं. अगर फ़ोन दिन भर यूज़ करते हो तो बैटरी बैकअप और कंफर्ट पे इन्वेस्ट करो, और अगर सिर्फ सोशल मीडिया देखनी है तो एक्सपेंसिव अपग्रेड हर साल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. पैसा वही स्मार्ट है जो यूज़फुल चीज़ों को लेके आती है. आपका रीसेंट बेस्ट परचेज क्या होता? आई नो सेप्टेम्बर इज़ कमिंग एंड आर बेस्ट परचेज इज़ नथिंग बट खरीदना आईफोन 18. So don't invest too much on gadgets because it is not good for us, guys.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
3: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
4: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
5: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट एस्ट्रोलॉजर ईश्वर .com.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

0: वेलकम बैक टू द आफ्टरनून अड्डा विथ मी आरजे स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 एफएम पर. नाउ इट्स द टाइम फॉर अ गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. एज यू नो मेरी गिव अवे कैसी होती है, आई एम गोना प्ले अ फेमस डायलॉग सेट बाय एन एक्टर. आपको बस वो एक्टर को गेस करनी है और मुझे कॉल करके बतानी है 972-235-5555 पर. सो रेडी फॉर द वॉइस गाइस, अच्छे से सुनो और कॉल कीजिए.
1: अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया.
0: So that was the dialogue. अभी कॉल कीजिए और बताइए ये हीरोइन कौन है एंड गेट द गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन.

You're listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phoenicia 104.9 FM. So I had a question for a fun giveaway, and we got the answer. That is Priyanka Chopra, and we have even the winner, Miss Swapnil Gupta. So pizza lovers, get ready for a flavor fiesta. Fun Pizza Kitchen le aaye apna brand new Mexican-inspired pizza lined up. Fresh fiesta veggie, spicy polo loco, seafood loaded Senor Cameron, और मुछो मुछो पोर्क, हर बाइट फुल फ्लेवरफुल और बोल्ड एंड फुल ऑफ फन एंड टेस्टी. तो वेट किस बात का, आज ही विजिट करें फन पिज़्ज़ा किचन और टेस्ट करें अपनी न्यू ऑब्सेशन. ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं funpizzakitchen.com. फन पिज़्ज़ा किचन, न्यू फ्लेवर्स एंड विथ न्यू ऑब्सेशन.

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanesha 104.9 FM पर. So, let's talk about viral gadgets. आजकल pocket-sized gadgets का जमाना है. Mini projectors, compact action cameras और smart wearables काफी trend में है. लोग travel पे भी content create करना चाहते हैं और gadgets अभी भी उसी हिसाब से lightweight हो गया है. और हाँ, portable speakers का craze तो कभी खत्म ही नहीं होता है. बस एक चीज याद रखिए, गैजेट वायरल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके काम भी हो. रिव्यूज देखना, कंपेयर करना और फिर डिसीजन लेना. स्मार्ट बायर बनना भी एक टैलेंट है बॉस. सो जस्ट डोंट बाय गैजेट्स बिकॉज समबडी इज हैविंग इट. प्लीज़ रीड अबाउट इट, उसका रिव्यूज़ देखिए, लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो काम आएगा कि नहीं. जस्ट डोंट बाय इट आउट ऑफ अ रैंडम मून. आई नो नाउडेज पीपल आर बाइंग इट एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गैजेट्स के एयरपॉड्स लुक्स कूल बट राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू यूज़ वायरलेस ईयरबड्स. इट्स बेटर यू यूज़ वायर्स बिकॉज दैट इज़ मोर सेफ फॉर योर ईयर्स ऑल्सो. हियर यू गो फॉर आवर नेक्स्ट ट्रैक.

It's 1:52 PM DFW के ट्रैफिक अपडेट्स और एक्सीडेंट रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं अटॉर्नी ओमर ख्वाजा की तरफ से। अगर आप कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल का शिकार हुए हैं तो लीगल टेंशन छोड़िए और रिकवरी पर फोकस कीजिए। अटॉर्नी ओमर ख्वाजा आपके हक की कॉम्पेंसेशन के लिए लड़ेंगे एंड यू पे नथिंग अनलेस यू विन। व्हाट अ नाइस थिंग। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 पर या विजिट करें attorneyomar.com। एंड हियर यू गो, आवर नेक्स्ट टू ब्यूटीफुल ट्रैक्स फॉर यू।

You are listening to the Afternoon Adda on Phanisha 104.9 with me, RJ Snigdha. So let's talk about AI apps. AI अब सिर्फ experts के लिए नहीं रहा. AI आजकल लोग AI से emails लिखवा रहे हैं, AI से presentations बना रहे हैं, photos edit कर रहे हैं और ideas भी generate कर रहे हैं. Students हो, office professionals हो या business owners, AI सबकी life थोड़ी easy बना ही रही है. लेकिन याद रखिए, AI सिर्फ assistant है, हमारी replacement नहीं. Final touch और human creativity अभी भी सबसे important है. तो अगर आपने अभी तक कोई AI ऐप ट्राई नहीं किया है, शायद आज ही परफेक्ट डे है उसके एक्सपेरिमेंट करना. आई वुड सजेस्ट यू शुड यूज़ क्लॉड, यू शुड यूज़ जेमिनी, यू शुड यूज़ चैट जीपीटी. आई नो देर आर लॉट ऑफ एआई एप्स. आजकल एआई की ज़माना चल रहा है, सो इवन यू गेट क्लोजर टू टेक एंड एआई एंड यूज़ इट फॉर योर, यू नो, इट हेल्प्स इन वेरी डिफरेंट वेज. मैं तो हो जाए.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM par. So, is Raksha Bandhan Phanisha Radio aur Choctaw Casino and Resort durant lekar aayi hai ek special contest. Apna bhai, you just have to do apne bhai ya behen ke saath एक सबसे यादगार मेमोरी का 1 मिनट वीडियो करनी है, व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजनी है ऑन 2148377147. यू जस्ट हैव टू मेक योर मेमोरी का 1 मिनट वॉइस नोट पर जीतिए. यू कैन गेट लाइक डेली प्राइजेस, रिसॉर्ट स्टेज, एंटरटेनमेंट और ग्रैंड प्राइजेस. चौकटाव में एक अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड भी आप पा सकते हैं. कॉन्टेस्ट की पूरी डिटेल्स के लिए फॉलो कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस. 21+ ओनली, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो प्ले रिस्पॉन्सिबली. दिस इज सो फन, मेक अ वीडियो विद योर सिबलिंग्स एंड सेंड इट टू फनीशा.

are listening to the afternoon adda with me RJ Snigdha on Phanisha 104.9 FM पर आपके डॉक्टर के पास आपके लिए कितना टाइम होता है 5 या 10 मिनट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में हर अपॉइंटमेंट के लिए मिलते हैं पूरे 30 मिनट क्योंकि आपकी हेल्थ को समझने के लिए टाइम ज़रूरी है एनुअल फिजिकल हो एंग्जाइटी केयर फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग और भी बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं इनके पास आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें 2146666259 पर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर योर हेल्थ इज देयर पैशन सो नेवर नेग्लेक्ट योर हेल्थ एंड दिस वॉज माई टाइम फॉर टूडे इट्स मी RJ Snigdha signing off and my last song for the day. Hum fir kal milte hain. Thank you for all my listeners to keep listening to me.

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: ना सब और प्राइस
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया।
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया।
14: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772, दैट्स 972-863-7772।
16: विजिट www.sanadainc.com टुडे।
17: Hi, this is Saleem Merchant from Saleem Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ढाई बजे से पांच बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे पांचों दिन वीक के मैं आपके साथ यहां ढाई से पांच तक मौजूद रहती हूं और आप भी मेरे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Every day I bring a new flavor to you. Or Tuesday's ka flavor hota hai ji Bollywood Spotlight. Spotlight dalte hain hum ek aise sitare pe, ek aise shakhs pe, jinhone hume kuch behtareen gaane diye Bollywood mein. Chahe wo singers ho, producers ho, directors ho, actors ho, music composers ho, anyone and everyone who has played a role in giving us some beautiful music. Aur aaj ki spotlight dali hai the dashing, the beautiful voice of Arman Malik. Let's celebrate Arman and put some spotlight on him. Aur sunati hu aapko unke gaaye hue kuch khoobsurat gaane. Let's begin with this one from the movie Khoobsurat.

फवाद खान और सोनम कपूर पे पिक्चराइज्ड ये गाना सोना महापुत्रा और अरमान मलिक की आवाजों में सुन रहे थे आप. आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है अरमान मलिक पे. बोर्न ऑन 22 जुलाई 1995. अभी आप कह लीजिए कोई दो हफ्ते पहले किया अरमान मलिक ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट. अपने करियर का आगाज एज अ सिंगर ही डिड एज अ चाइल्ड वोकलिस्ट इन बॉलीवुड विद द मूवी तारे जमीन पर. उसमें बम बम बोले का जो चाइल्ड वोकलिस्ट था वो अरमान मलिक थे. और उसके बाद उन्होंने यू नो मेड हिज फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपेयरेंस इन द फिल्म कच्चा लिंबू जो कि 2011 में आई थी. और सिंस देन बहुत सारे अच्छे और मशहूर गाने हमें अरमान मलिक ने दिए. बड़ी मुझे उनकी जो है वो सॉफ्ट और क्यूट और मखमली सी आवाज़ लगती है. सो कुछ ऐसे ही मेरे पास चंद एक गाने अरमान मलिक के लाइनअप है आपके लिए जो बैक टू बैक आपके लिए प्ले होंगे. सो दिस इज येट अनदर ब्यूटिफुल नंबर टेकन फ्रॉम द मूवी हीरो.

ये मीठी मीठी आवाज अरमान मलिक की, और उन्हीं पे हमने डाली है आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। गाने बहुत सारे मेरे पास लाइंड अप हैं आपके लिए, और अगला गाना प्ले करने से पहले आपको ये बता दी चलूँ कि अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रही हैं फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम ओनरशिप ड्रीम इनटू अ रियलिटी। और क्या करते हैं जी, पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रेस फ्री और स्मूथ प्रोसेस के थ्रू होता है। कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल। लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स, एक्सपीरियंस टीम है उनकी, एंड दे आर कमिटेड इन फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन दैट इज टेलर्ड अराउंड योर नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, कंसोलिडेट कर रहे हो अपनी डेट, अपग्रेड कर रहे हो, रिफाइनेंसिंग कराना चाहते हो, एवरीथिंग कैन बी डन विद ड्रीम होम मॉर्गेज। तो आज ही अपना होम ओनरशिप की के ड्रीम को पूरा कीजिए, या जो भी आपका लोन के हवाले से क्वेश्चन है या सवाल है तो जरूर ड्रीम होम मॉर्गेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए, 972-245-5626, 972-245-5626 इज दैट नंबर, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट dreamhomemortgage.com, dreamhomemortgage.com। और आपको बताती चलूं कि ड्रीम होम मॉर्गेज के हुसैन पंजवानी जी हमारे साथ यानी कि आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में एवरी वेंसडे कनेक्टेड होते हैं 4:30 बजे। सो यू नो यू कैन लिसन टू हिम एंड सी व्हाट ही हैज टू से लाइव एज वेल। वंस अगेन दैट नंबर इज 972-245-5626, एंड नाउ वी आर बैक टू अरमान मलिक।

अरमान मलिक पे हमने स्पॉटलाइट डाली है जी. अमल मलिक हैं अरमान मलिक के बड़े भाई और ही इज़ अ म्यूजिशियन. और कई शुरू में मैंने देखा कि कई सारे गाने अमल मलिक ने जो कंपोज किए उनको अरमान मलिक ने गाया. वैसे आपको बताते चलें कि अरमान मलिक ने अपने करियर का आगाज किया था 2006 में, 2006 व्हेन ही अपेयर्ड इन द टीवी सिंगिंग कॉम्पिटिशन सारे गामापा लिटिल चैम्प्स. तो बचपन से जो सिंगिंग का उन्होंने शुरू किया और लिटिल चैम्प्स जो है उसमें ये 8वीं पोजीशन पे आए थे, 8th पोजीशन अंडर द म्यूजिकल डायरेक्शन ऑफ शंकर एहसान लॉय. उन्होंने अपना डेब्यू किया एज अ चाइल्ड सिंगर इन द सॉन्ग बम बम बोले, जो कि तारे जमीन पे 2007 में आया था. 2010 में उन्होंने अपनी आवाज दी एक यू नो इंग्लिश बॉय की इन माय नेम इज खान, और फिर ही वॉइस द कैरेक्टर सलीम इन द रेडियो अडेप्टेशन ऑफ स्लम डॉग मिलियनर फॉर बीबीसी रेडियो 1. तो ये था उनका अर्ली जर्नी टूवर्ड्स सिंगिंग एंड हाउ ही यू नो काइंड ऑफ स्टेप्ड इन द इंडस्ट्री एंड स्टेप बाय स्टेप हाउ ही मूव्ड फॉरवर्ड. तो अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं. दिस मूवी वॉज हेट स्टोरी 3. इस फिल्म में ये गाना बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, दिस इज वजह तुम हो.

और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं जी. PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. तो जरूर आइए, विजिट कीजिए PMJ Jewels, where you will find stunning gold, diamond as well as bridal collections. हर कोई भी सेलिब्रेशन हो आपका, माइलस्टोन है, सेलिब्रेशन है, यू जस्ट वांट टू ट्रीट योरसेल्फ. आज बस कभी कभी दिल करता है कि यार कोई एक रिंग चाहिए या एक इयररिंग चाहिए या समथिंग, एक नेकलेस खरीदना, एक चेन खरीदनी है. PMJ Jewels is the place to go, proudly associated with Mahesh Babu and Sitara. PMJ is a name trusted by generations. They are located in Frisco on Main Street. तो आइए और डिस्कवर कीजिए ऐसी ज्वेलरी जिसके हर पीस में मिलेगी आपको एक कहानी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
9: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
7: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है। चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
13: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
12: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

0: पहनेंगे कनुप्रिया की रिसेप्शन पे। सुना है ना?
1: हाँ? अपनी बहन की शादी में फायर ब्रिगेड बुलवाओगी त्रिपाठी? पाप लगेगा तुमको।
0: सुनिए, किसी तपन सिंह बॉस रिलेटिव का फोन है, ले ले।

अरमान मलिक पे स्पॉटलाइट डाली है आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 2:30 टिल 5 पीएम आई एम हियर विद यू. सम ब्यूटीफुल म्यूजिक दैट हैज बीन संग बाय अरमान मलिक. और पिछले आधे पौने घंटे से हम यही कर रहे हैं. आगे भी मेरे पास बहुत सारे गाने आपके लिए लाइंड अप है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, कम एंड सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026. दिस इज हैपनिंग जी ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th 2 PM onwards, Comerica Center, Frisco में. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी, 2 बजे दोपहर, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली इंडोर्स इवेंट. और अलॉन्ग विद दैट एवरीवन इज फ्री, बिल्कुल फ्री एंट्री है. कोई टिकट आपको नहीं लेना, गर्मी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको. इट इज इंडोर्स इवेंट, सो जरूर आइए. ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, और साथ ही साथ अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं या करती हैं, तो शॉपिंग का पूरा इंतजाम किया गया है आपके लिए. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स, आइए एंजॉय कीजिए एंड बी पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. दिस इज IANT आनंद बाजार 2026, August 15, 2 PM onwards at the Comerica Center in Frisco.

आदिति सिंह शर्मा और अरमान मलिक की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना। और हमने जी स्पॉटलाइट डाली है आज अरमान मलिक पे, कुछ बड़े ही खूबसूरत गाने उन्होंने हमें दिए। और द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट अरमान मलिक इज हिज वॉइस टोनल क्वालिटी। वो बड़ी डिफरेंट है कुछ, यू नो, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आवाज़ बड़ी मखमली होती है, जैसे आतिफ असलम की आवाज़ इज़ वेरी हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल, इसी तरह अली हैदर की आवाज़ थोड़ी सी मखमली है, इसी तरह खैर सोनू निगम तो अपने ही है, जैसे विशाल हैं उनकी आवाज़ बड़ी पावरफुल है, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई डैंग डैंग डैंग हो रहा है, इसी तरह अरमान मलिक की आवाज़ बड़ी ही सूदिंग सी कानों को लगती है। ऐसे ही कुछ गाने आपके लिए रेडी कर रखे हैं तो प्ले कर रही हूँ बैक टू बैक। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आपका कुछ आज मेहमान आ रहे हैं या वैसे घर में खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, बाहर खाना है लेकिन घर जैसा खाना खाने का दिल है आपका, पर बाहर भी खाना है घर जैसा भी खाना है, तो फिर तंदूरी फ्लेम जाइए जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है। दे आर सर्विंग, यू नो, सिजलिंग तंदूरी प्लैटर्स हैं उनके पास, रिच करीज हैं, तंदूरी कबाब्स हैं, हॉट फ्रेश नान आपको मिलेंगे, मतलब सारी आपकी जो नॉर्थ इंडियन फेवरेट कुजीन है वो सब आपको मिलेगी वहाँ पे। एंड जो सोने पे सुहागा बात है वो ये कि घर जैसे स्वाद के साथ, सो होम स्टाइल कुकिंग अगर आपने करनी है किसी रेस्टोरेंट में जाके तो दैट इज तंदूरी फ्लेम। दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड, ज़रूर विजिट कीजिए, जाइए खाइए या फिर घर ले आइए या फिर केटर कराइए। दे आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग।

2014 में अरमान मलिक ने अपना प्लेबैक म्यूजिक का डेब्यू किया जी विद तुमको तो आना ही था फ्रॉम द मूवी जय हो. उसके बाद ही यू नो कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म्स टाइटल ट्रैक एंड लव यू टिल द एंड. जबकि वो अपने भाई की कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आए अमल मलिक की. मैंने अभी आपको बताया था कि वो अमल मलिक के छोटे भाई हैं हु इज अ म्यूजिक कंपोजर और वहां से ही थोड़े से लाइमलाइट में आने शुरू हुए. इन द सेम ईयर ही सैंग सॉन्ग्स फॉर खूबसूरत जो नैना मैंने आपके लिए भी प्ले किया था एंड ऑल्सो उंगली मूवी के लिए ओलिया के लिए. और फिर साथ ही साथ उन्होंने अपना एक म्यूजिक एल्बम निकाला जिसका नाम था अरमान. तो इसी तरह जर्नी उनकी आगे बढ़ती रही. फिर ही सैंग फॉर मूवीज लाइक हीरो एंड कैलेंडर गर्ल्स एंड हिट स्टोरी 3 जिसमें यू नो सॉन्ग्स लाइक तुम्हें अपना बनाने की कसम जो अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले प्ले किया था, वजह तुम हो एक बहुत ही सुपर हिट गाना. और साथ ही साथ ही रिलीज सिंगल्स लाइक मैं रहूं या ना रहूं या फिर यार उनका एक और गाना जो सिंगल्स भी करते हैं, अपनी एल्बम्स भी निकालते हैं, मूवीज में भी गाना गाते हैं. मतलब ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग and some songs have really made their mark. Acha kuch Arman Malik ke remixes aaye aur logon ne unhe suna aur pasand bhi kiya. Ek aisa hi remix aaya tha to each their own. Kuch logon ko original bahut acha laga, but this is a remix that he sang for the super hit song Ghar Se Nikalte Hi. Let's listen to this Arman Malik version of Ghar Se Nikalte Hi. Kuch Dur Chalte Hi, raste mein hai unka ghar.

Arman Malik is made for these soft romantic melodies. That's my take, but you know, your take can be different, no worries. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रोमांटिक गाने हैं अरमान मलिक के गाए हुए, जो हमेशा जब अरमान मलिक रोमांटिक गाना गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगला जो रोमांटिक गाना मैं आपके लिए उनका लगाने वाली हूँ, दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी बागी, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स दैट ही हैज़ वन ऑफ माई एक दो और हैं फेवरेट, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज. एक और है कबीर सिंह का, वो भी आपके लिए प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ, दिस पार्ट ऑफ आर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ए जी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यू. तो जी, आप चाहे इंडिविजुअल हो या यू हैव अ स्टार्टअप और यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर करती है आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपकी नीड्स के इर्द गिर्द टेलर किए जाते हैं, फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या फिर आपको बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, एजी फिनटेक्स विल हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. तो जरूर उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए जी, एंड मेक देम योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर. सो एजी फिनटेक्स का नंबर ले लीजिए, कोई भी आपके जहन में सवाल है, और इफ यू जस्ट वांट टू गिव देम अ कॉल एंड डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, देयर इज नो हार्म इन दैट, मेकिंग दैट कॉल. दैट नंबर इज 469-942-9888 is that number, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज ए जी फिनटेक्स, FINTAX, AGFINTAX.com.

0: और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अभी बहुत सारे अरमान मलिक के गाए हुए गाने मेरे पास आपके लिए लाइंड अप है, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए प्ले कर रही हूँ. सो दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, या आप कह लीजिए मोस्ट लाइक्ड रोमांटिक सॉन्ग्स इन अरमान मलिक्स वॉइस, अलॉन्ग विद अनदर वन जो है जी कबीर सिंह से लिया गया, और वो गाना है देखिए पहला पहला प्यार. जी पहला पहला प्यार. वो अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी. सो व्हाइल हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो वी ऑल नीड टू और वी ऑल विश कि हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो हमें थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ी केयर दे, थोड़ी अटेंशन दे, एंड 5-10 मिनट्स ऐसे इन एंड आउट ना करे, बल्कि थोड़ा यू नो हमारी बात सुन ले कि हमें मसला क्या है हमारी ज़िंदगी में. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ दैट प्लेस फॉर यू. हर अपॉइंटमेंट आधे घंटे के लिए स्केड्यूल की जाती है. दे ट्रूली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देयर पेशेंट्स एंड दैट इज़ वाई it is one of the best places for you to go. Passion Health Primary Care, 30 minutes is all it takes to complete your annual physicals. Anxiety care aapko chahiye, fibro scan for alcohol related liver concerns hain, vitamin B12 deficiency testing hai, and so much more that is happening at Passion Health Primary Care. So schedule your appointment aaj hi, schedule kijiye by calling at this number 214-666-6259. 214-666-6259 is that number where you are going to call and book your appointment. Health, primary care.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years older to game.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
8: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स, सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
9: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
8: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
10: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल। Phonasia 104.9 FM।

बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली है अरमान मलिक पे. अरमान मलिक के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने, सुपरहिट गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. और आपको बताऊं जी कि ना सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अरमान मलिक ने गाने गाए, जबकि यू नो ही did sing in Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, Malayalam, Marathi, Gujarati, Urdu और Konkani, Oriya और साथ ही साथ कुछ अपने singles भी गाए उन्होंने, कुछ हल्का सा English और Urdu Hindi का mix भी. So he is definitely you know मल्टी लिंगुअल गाने गाते हैं. और ना सिर्फ ये कि उन्होंने गाने गाए हैं बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर हिज नॉन हिंदी सॉन्ग्स, जैसे कि साउथ फिल्म फेयर साउथ के लिए उन्होंने 4 या 3 नॉमिनेशन पाई और जिनमें से 2 ही एक्चुअली वन. सो अदर देन दैट ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर एन ओवरऑल टाइम ऑफ 23 नॉमिनेशंस, जिसमें से 19 बार ही हैज़ वन डिफरेंट म्यूजिक अवार्ड सेरेमनीज में, जैसे कि मिर्ची अवार्ड्स हुआ, या फिर बिग स्टार एंटरटेनमेंट स्टारडस्ट, फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड, या फिर फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड्स हों, या फिर MTV अवार्ड्स हों, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स हों, हर जगह नॉमिनेशन भी पाई और जीता भी. सो लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट नंबर टेकन फ्रॉम द मूवी बार बार देखो.

और इसी के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे. गिव अवे आया है जी चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. और आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि गिव अवे इज यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50. तो आप चंडीगढ़ बाइट्स जाएंगे, $50 का आपका बिल होगा, तो यू विल गेट $10 ऑफ. प्लस उनकी वीक डे स्पेशल्स चलते हैं, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ. इंजॉय कर सकते हैं आप उनकी स्पेशल थालीज मंडे थ्रू फ्राइडे. एक्चुअली एक्साइटिंग न्यू थाली वो ऑफर करते हैं, मतलब डिशेस जो हैं वो रोटेट होती रहती हैं. ऐसा नहीं है कि आप हर रोज जाएंगे तो हर रोज आपको एक ही खाना परोसा हुआ मिलेगा थाली में, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट डिशेस चेंज होती हैं. लंच ओनली जो थाली होती है उनकी मंडे थ्रू फ्राइडे. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, सो डू विजिट देम और चेक आउट देयर वेबसाइट टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर मेन्यू, देयर लोकेशन एंड मोर थिंग्स दैट दे आर ऑफरिंग. दैट वेबसाइट इज chandigarhbites.com. Once again, the website is chandigarhbites.com. और अब आपके पास ये चांस है टू विन $10 ऑफ योर $50 बिल. और आपको क्या करना है, हम मना रहे हैं आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में, स्पॉटलाइट डाली है हमने अरमान मलिक पे, उनकी मखमली और खूबसूरत यू नो ब्यूटिफुल और वेलवेटी आवाज में कुछ गाने मैं आपको सुना रही हूँ. आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि अरमान मलिक की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. ये हिंट मैंने आपको दे दी, जुलाई में है, दैट इज द हिंट. डेट बतानी है आपने मुझे और ईयर बताना है. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. कॉल कीजिए और बताइए व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अरमान मलिक.

Alright, जी, गिवअवे आया था आपके लिए चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. यू हैड द चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और सवाल आपसे बस बहुत सीधा सा पूछा था कि अरमान मलिक की डेट ऑफ बर्थ बताइए, और बिल्कुल सही जवाब आप सबने दिया. सबसे पहले लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. July 22nd, 1995 इज वो है सज्जाद. सज्जाद साहब, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिवअवे. देखिए, जब आपकी फोन कॉल्स आती हैं तो आप जिस सीक्वेंस में कॉल करते हैं वो एक मैथ के फॉर्मूले में मैं नंबर डालती हूँ और उन्हीं से आपका लकी विन अनाउंस होता है. तो मैं आपकी लकी आपकी विन का फैसला करती है. सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस सज्जाद साहब. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइट्स पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $10 ऑफ योर डाइनिंग बिल ऑफ $50 और मोर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. फनी जी इस तरह के बहुत सारे गिवअवेज आपके लिए लेकर आता है. आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है. दिस इज Fun Asia Radio.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. और जी बिल्कुल आफ्टरनून ड्राइव टाइम का टाइम है. तो आपको बताती चलूं कि ट्रैफिक अपडेट आपको देने से पहले ये बताना चाहती हूं कि ध्यान से गाड़ी चलाइए. यू नो इट टेक्स अ सेकेंड फॉर समथिंग बैड टू हैपन बट रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच लॉन्गर. और अगर आप unfortunately या somebody you know of is involved in a car crash या फिर ट्रक एक्सीडेंट या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स स्ट्रेस, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ से गुजरते हैं तो देर इज सो मेनी फैक्टर्स जो हमें स्ट्रेस देते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना हो, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो हमें बहुत सारी सिचुएशंस में मालूम ही नहीं होती. एज अ रेगुलर लॉ अबाइडिंग सिटीजन वी डोंट नो द निटिग्रिटीज ऑफ लॉट्स ऑफ दीज सिचुएशंस. तो प्लस आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखना है. सो यू नीड एन अटर्नी जो आपके लिए बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखे वाइल यू आर रिकवरिंग एंड फोकसिंग ऑन योर हेल्थ. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम ना सिर्फ आपका केस फाइल करेगी बल्कि दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते. सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर यू. इस मुश्किल घड़ी में राहत की खबर है ये आपके लिए. सो यू और समवन यू नो इज गोइंग थ्रू समवन समथिंग लाइक दैट, प्लीज गिव अटर्नी ओमर ख्वाजा अ कॉल. दैट नंबर इज 4693005046 उनका नंबर, या फिर attorneyomar.com पे लॉग ऑन कीजिए. दैट इज कैपिटल ओ एम ए आर, कैपिटल ओ बोलना जरूरी नहीं था, attorneyomar.com फॉर फ्री कंसल्टेशन. तो अब इस गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो आई विल ब्रिंग यू द ट्रैफिक अपडेट ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा.

एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल वॉइस, सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक दो फिल्मों में एक्टिंग भी की है. 22 जुलाई इज इज डेट ऑफ बर्थ. नोन फॉर सिंगिंग इन मैनी लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, तेलुगू, इंग्लिश, उसी के साथ उर्दू, तमिल, कन्नडा, बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाया है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो गाने गाए हैं उनके लिए उन्हें अप्रिसिएशन भी मिली है, अवार्ड्स भी मिली है. कम्स फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली. हिज ब्रदर इज द कंपोजर अमल मलिक और अरमान मलिक इज द वॉइस जो अक्सर उनके भाई के गानों को वो देते हैं. सो ये चंद एक गाने मेरे पास अभी मजीद लाइंड अप हैं अरमान मलिक के जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको, चलिए पहले हम ये गाना प्ले करते हैं अगला और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रक्षाबंधन आने वाला है और उसके लिए क्या स्पेशल कर रहा है फन एशिया और चौकटाव कसीना आपके लिए. दैट विल बी आफ्टर दिस सॉन्ग.

और रक्षाबंधन के लिए भी एक ऐसा ही आपके लिए कुछ आ रहा है जिसका सुनकर आप कहेंगे दे ताली, यानी कि जबरदस्त। दिस रक्षाबंधन फाइनेंशियल रेडियो और चौकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इंड्योरेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस। और इनमें क्या क्या होगा जी? दीज इंक्लूड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज और साथ ही साथ ग्रैंड प्राइज भी जीत सकते हैं आप, विच विल बी एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट लोकेटेड इन ड्यूरेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये बताऊं आपको, तोहफे तो मैंने आपको बता दिए कि आप क्या जीत सकते हैं, लेकिन आपको करना ये है कि आपको बतानी है अपनी अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और योर सिस्टर। और कैसे बतानी है? यू हैव टू रिकॉर्ड अ 1 मिनट वॉइस मेमो एंड फॉरवर्ड इट और व्हाट्सएप इट एट दिस नंबर। नंबर नोट कर लीजिए फॉर व्हाट्सएपिंग योर 1 मिनट वॉइस मेमो दैट इंक्लूड्स और दैट टेल्स द स्टोरी एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी बिटवीन यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर और सिस्टर। तो नंबर है जी 214-837-7147, 214-837-7147 इज द नंबर। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस पे, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। अगर अब तक आपने हमें फॉलो नहीं करना शुरू किया तो डू फॉलो इट ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस। This is Choctaw Casino and Resort in Durant, where unforgettable memories are made together. You have to be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply. And please play responsibly. With that, it is time now to wrap up our Arman Malik segment. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और गाना है अरमान मलिक की आवाज में जो romantic songs में मेरी top list पे आता है, and that is taken from the movie Kabir Singh. So I'm going to end this segment. अभी मैं आधा घंटा आपके साथ मौजूद हूँ. We are going to end up this Bollywood spotlight on Arman Malik with this beautiful song. This is पहला पहला प्यार.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए, और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
4: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.senadainc.com today.
9: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
10: बेटा 95% आए?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicability.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनीशा 104.9 FM.

0: जी हाँ, एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. आप सुन रहे हैं 104.9 FM Financial Radio. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आई एम हियर विद यू टिल 5 PM, 2:30 PM से 5 PM हर रोज मंडे टू फ्राइडे आपके आफ्टरनून ड्राइव टाइम में रहती हूँ आपके साथ. और अब वक्त आ चला है आपको कनेक्ट करने का विद आर उरा डेट रिलीफ सेगमेंट. हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी, जो कि हमें बताएंगे कि उरा डेट रिलीफ आपको और मुझे कैसे हेल्प कर सकता है इन मेंटेनिंग एंड मेकिंग राइट चॉइसेस अबाउट आवर डेट्स. सो लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ Fanisha. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फनीशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. अगस्त का महीना है, चौथा दिन है, यानी कि ये हफ्ता क्रूशियल है हम सब के लिए. वो ये कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम लेटर्स आने वाली हैं. सबके मेल बॉक्स में आएगा कि इस बैंक की इतनी मिनिमम पेमेंट दे दीजिए, उस बैंक की इतनी मिनिमम पेमेंट दे दीजिए. और आप आंखें बंद कर आप वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा जो पिछले कुछ महीनों से आप करते आ रहे हैं. क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है. तो अगर आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं उतर रहा है, मैं हर महीने टाइम पर पेमेंट देता हूं, सिर्फ इसी गलतफहमी में कि मेरा क्रेडिट स्कोर बिल्ड रहे, क्रेडिट स्कोर बना रहे, तो आप जान के हैरानी होगी कि अगर आप मिनिमम पेमेंट देते हैं, क्रेडिट स्कोर बना नहीं रहता, क्रेडिट स्कोर भी नीचे जाता है, क्योंकि आपको कोई लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो हाई है. क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि आपको नया लोन मिल ही नहीं सकता. डजंट मैटर आप मिनिमम पेमेंट टाइम पर देते. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, आधे से ज्यादा माफ हो जाए, आधे से ज्यादा माफ हो जाए, आधे से ज्यादा माफ हो जाए, तो ध्यान से सुनिए, कॉल उरा को कीजिए. उरा आपके सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, बिजनेस के, पर्सनल, स्टोर के, आपके, भाभी जी के, बच्चों के, इन सब की एक पेमेंट बना देगा. सो इजी टू मेंटेन, बजट भी इजी हो जाएगा. दूसरा, आधा से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा. तीसरा, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड, आपके पर्सनल लोन या फिर आपकी गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है किसी कारण, उस लोन को भी आधे से ज्यादा नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. सो स्टॉप पेइंग मिनिमम पेमेंट, उसका कोई फायदा नहीं है. जस्ट गिव अस अ कॉल 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555. हमारी वेबसाइट है www.ura.org, वहां पर भी आप सबमिशन कर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आधे से ज्यादा कर्जा माफ.
0: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.

Drop the bait.

अच्छा, ये जो गाना आप सुन रहे थे, ये लिया गया है मूवी शादी में जरूर आना से, जिसमें हमें नजर आए देखिए राजकुमार राव और साथ ही कृति खरबंदा। अगर आपने शादी में जरूर आना देखी है तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं कहती हूँ कि सजेस्ट करती हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जरूर देखिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मजे की स्टोरी है। यू नो किस तरह से आखिरी थोड़ी एंडिंग जरा ओवर द टॉप हो जाती है, बट यू गोइंग टू एंजॉय द राइड ऑफ शादी में जरूर आना। बाकी आई वोंट ब्रेक द स्टोरी फॉर यू, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट डू टेक सम टाइम आउट, अगर थोड़ा सा हो तो देखिए, यू विल एंजॉय इट। अच्छा, ये रही हुई आपके लिए बात, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप में से चंद एक भी इंजॉय करें तो देयर यू गो, मेरा मकसद हुआ पूरा। और अब मैं देने लगी हूँ आपको वेदर अपडेट। वेदर में अभी कुछ इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू, आज है ट्यूजडे ऑगस्ट द 4th, 4:44 PM इन द स्टूडियो, और सिटी ऑफ मेकिनी में इस वक्त है 99 degrees, however it feels like 102. आज का दिन रहा सनी, हॉट विद हाईज अराउंड ऑफ कोर्स 100, जबकि आज की शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द अपर 70s. पोलन काउंट पिछले कई दिनों से अराउंड 4 और 5 के दरमियान है, टुडे इज 4.7 विच इज ऑफ कोर्स लो मीडियम, जबकि यूवी इंडेक्स इज एक्सट्रीमली हाई टुडे, 11 यूवी इंडेक्स का नंबर है विच इज ऑफ कोर्स द मैक्सिमम। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं अभी भी शाम में भी, तो अपनी सनस्क्रीन हैंडी रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनराइज आज का हुआ 6:41 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:23 PM. दिन दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े छोटे होने शुरू हो गए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अब हम आगे आगे जाएंगे तो दिन छोटे होते जाएंगे, रातें लंबी होती जाएंगी। सो एंजॉय द डे व्हाइल यू हैव इट, कीप योर सनस्क्रीन हैंडी एंड कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड। दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।

एंड विद दैट इट इज़ टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो आज ही इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74 विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. इंडियन रुपी 95.25 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कनेडियन डॉलर 1.40 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.75 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि नेपाली रुपी 152.47 पे स्टैंड कर रहा है. और इसी के साथ बांग्लादेशी टका 123.75 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. एंड आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. स्टे ट्यून्ड.

जी हाँ, और फनी एशिया के साथ रहेंगे तो यूं ही एंजॉय करेंगे, इसलिए चैनल चेंज बिल्कुल मत कीजिए. 104.9 FM फनी एशिया रेडियो आपके सुहाने सफर का साथी, बल्कि वो कहती है ना संगीत भरा म्यूजिक भरा साथी. यूं ही एंजॉय करते रहिए, फनी एशिया सुनते रहिए. और इसी के साथ वक्त आ गया है आपको गोल्ड प्राइस अपडेट देने का कि सोने का भाव क्या रहा आज. तो अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग आज यानी कि ट्यूजडे अगस्त 4th इस वक्त गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,077.58, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $131.10. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $1.39 का इजाफा देखने को मिला, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $43.04 का इजाफा हुआ. That is pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran.

And with that, it is time for a wrap from my side. Thank you so much. आज की दोपहर मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मैं मिलूंगी आपसे कल. कल है वेंसडे और आप जानते हैं कि आफ्टरनून ड्राइव टाइम ऑन विद सुनहरी किरण ऑन वेंसडेज आपके लिए बहुत स्पेशल होता है. रोमांटिक मेलोडीज से हम शुरू करते हैं पॉप फ्रीक्वेंसी एंड देन आई कवर द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. उसके बारे में बात की जाती है और आपको वो सेगमेंट में बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं और आप सब बहुत सारे लोग वही ड्रामे देख रहे होते हैं, कुछ रिकमेंडेशन लेते. So that is going to be that, and then we will end up with a trophy track. So lots of music, lots of different things are lined up for you for tomorrow. That is Wednesday. Bane rahiye hamare saath, stay tuned, stay healthy, stay safe. I will see you tomorrow. Have a lovely rest of your evening.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
19: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
18: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

Outside of all the things that we cannot control, always remember two things you can always control is your attitude and your efforts. A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Main hoon ji Banda Bindas, Marvin Das, and I'm with you Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. I hope wherever you are enjoying the best of your life's capability. Aur agar wo nahi ho raha hai, then tweak a little things, little bit of things here and there, and make sure that two things, kyunki hum kehte hain na ki yaar zindagi mein waise to hamare control mein kuch bhi nahi hai. Ye waqt kya hoga, kya ho gaya, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट वॉट वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इज हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स, हाउ वी रिएक्ट टू इमोशंस, एंड हाउ मच एफर्ट वी पुट इनटू समथिंग. वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतना ही मीठा होता जाएगा. एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट आई पुट ऑल द स्वीटनेस ऑफ माय हार्ट विद सम लवली म्यूजिक, लवली चैट्स इन दिस 2 आवर सेशन. 7 बजे तक रहूंगा आपके साथ. आई वांट टू गिव अ बिग थैंक्स टू माय ऑलमाइटी, जिसने मुझे दिया एक और मौका टू बी हियर एंड एंटरटेन यू ऑल विद दिस इवनिंग ड्राइव टाइम शो. कुछ आपकी बातें, कुछ मेरी बातें, हर बार की तरह. एंड बस इसी तरह इस प्यारे से सफर को करेंगे जी हम बसर. एंड द नेक्स्ट ट्रैक दैट आई हैव लाइन्ड अप फॉर यू इज अ लवली वन. एंजॉय करें इसको as we start our show. Studio ka number 972-235-5555. Birthdays, anniversaries, koi bhi special achievement aapki, aapki wife ki, aapke bachchon ki, all are welcome.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
3: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
2: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
3: इंडिया तक।
2: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभाल लेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: अरे यार, घर मिल गया।
11: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
11: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट अजयप्रभु.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौकटॉ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

सुबह से भाई गॉड फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, फोन पे फोन बजे जा रहे हैं। दरअसल मैंने अपनी काम की जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, एक और काम है रेडियो के अलावा, उस पे मैंने ये लिख दिया था कि भैया बीवी की आवाज़ कम करने का रिमोट यहाँ मिलता है। अब लोग फोन करे जा रहे हैं। अब लिखना टीवी था,

0: भाई गॉड परेशान हो गया हूँ मैं, वो बार बार फोन करे कहाँ है रिमोट, कहाँ है रिमोट। मैंने कहा यार बीवी नहीं भाई, टीवी लिखना था, टाइपो हो गया, माफ करो दोस्तों।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है।
0: It is 5:26 in the studio clock, 5:26, 25 बोलने लगा था पर 26 चला गया। घड़ी मेरी बात कहाँ सुनती है, रुकती नहीं। अच्छा आपको पता है जो भी मर्द हजरात हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आपके घर में ना हर चीज अगर खराब हो जाती है ना आप उसको ठीक करवा सकते हो। जैसे कई चीज़ों की तो वारंटी भी आती है, बल्ब की, आपकी वॉशिंग मशीन की, आपकी टीवी की, अवन की। कोई लाइट ख़राब हो जाए, बल्ब चेंज किया ठीक हो जाता है, कोई प्लग ख़राब हो गया उसका स्विच बोर्ड ठीक किया ठीक हो जाता है। पर आपको पता है ना आपके घर में एक चीज़ है जिसको जब भी ख़राब हो जाती है, वो कभी भी हो सकती है पहली बात तो ख़राब, और जब वो ख़राब हो जाती है पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, टाइम कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। अब ये चीज़ क्या है ये आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हो, मैं क्या बताऊँ। बाकी चीज़ों की तो वारंटी है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर एक चीज़ है आपके घर में कभी कभी तो गाड़ी में भी आपके साथ होती है वो चीज़ जो कभी भी ख़राब हो सकती है, और जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती ब्रो। बिट्टू पाजी कहते जी पंजाबी मस्त।

0: संजू बाबा इन दैट ट्रैक, आनंद राज आनंद का म्यूजिक, नो प्रॉब्लम वाज द मूवी। और मुझे ये बात नहीं समझ आती कि लड़कियों को जब बताना ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा क्यों प्रटेंड करती हैं कि कोई उनसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट हो हमारे से, बट हम लड़कों का सीधा है, हमें कोई प्रॉब्लम है हम बता देते हैं, हाँ भाई मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, चल, तो ऐसा हो जाता है। बट वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब हद तो तब हो गई जब एक लड़की ने घोर तपस्या करी, कई सालों तपस्या करती रही, भगवान ने भी बोला पता नहीं क्या चाहिए इस कन्या को, भगवान नीचे आ गए, आए तो कन्या से पूछते हैं, बोल कन्या क्या चाहती हो? कहती है, रहने तो भगवान, आप नहीं समझोगे। बट आपको पता है, आपको एक कंपनी जरूर समझेगी, उसका नाम है SFL वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, जो परेशानी होती है ना कि मेरा सामान टूट जाएगा, मेरा शीशे का ड्रेसिंग टेबल, मेरा वो क्या बोलते हैं ड्रेसर टेबल, एंड फिर आपकी इतनी अच्छी ज्वेलरी आपने अच्छे से स्टैक करी है लेडीज, और आपके हस्बैंड ने बोल दिया घर मूव करना है, इनको तो बस ये है कि घर मूव कर लो, कैसे होना है इनको थोड़ी पता है। पर भाभी आप टेंशन मत लो, आपकी टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास है राहों का राही राहुल, SFL वर्ल्ड वाइड के साथ। कैसे हो राहुल?
1: गुड गुड मामू, आप कैसे?
0: बहुत बढ़िया सर। ये जो हमारी भाभियों को परेशान किया हुआ है हमारे भाइयों ने कि घर मूव करना है जी, यहाँ से हम अब टेक्सस से न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क से टेक्सस आएंगे, तो यार भाभी की परेशानी जेन्युइन है कि भाई इतना ग्लास का डाइनिंग टेबल लिया था, वो मार्बल के टेबल लिए हुए घर में, वो ग्रैंडफादर क्लॉक है यार, ये जाएगी ऐसे? राहुल भैया थोड़ी सी लाइट इस पे डालिए और हमारी भाभियों को परेशानी से दूर कीजिए।
1: जी, सो SFL वर्ल्ड वाइड जो है वो एक शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है, तो मैं आपको इसकी कुछ कुछ फीचर्स बता दूँ जो हम प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप मूव कर रहे हैं, आप कोई फॉर एग्जांपल आप डालस से सियाटल या कहीं और मूव कर रहे हैं, मे बी इंटरनेशनली मूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ में SFL वर्ल्ड वाइड आपकी काफ़ी हेल्प करता है। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपका सारा सामान डिसेंबल करके प्रॉपरली पैक करके उसको जो ट्रक है हमारे पास उसमें लोड करके इंटरनेशनली या फिर लोकली आपका सारा सामान मूव करते हैं, और आपके डेस्टिनेशन पर जाके जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसको अनपैक करके एग्जैक्टली हाउ यू वॉन्ट उसको हम प्रॉपरली आपके घर में अरेंज करके आपको।
0: सो बेसिकली यू हैव पार्टनरशिप्स विद डिफरेंट टीम्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स, जो यहाँ से तो चलो ओरिजिन से तो समझ आता है कि यू कैन पैक नाइसली, बट व्हेन इट गोज देयर वहां पे आप टीम भी अरेंज करके देते हैं ताकि ये जो सीमलेस प्रोसेस है वो हो सके।
1: एब्सोल्युटली,
0: दैट इज वंडरफुल। एंड यू नो हमारे डैलस फोर्ट वर्थ में वी आई थिंक वी हैव अ ब्लेस्ड सिटी हियर, बिकॉज पहली बात तो आउटसाइड ऑफ व्हाट द गोराज आर सेइंग अबाउट अस, वी आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज जॉब्स एंड बिजनेसेस एंड क्रिएटिंग एम्पावरमेंट एंड यू नो जॉब्स एंड राइजिंग अप द इकोनॉमी, आई थिंक साउथ एशियंस आर प्लेइंग अ बिग रोल नाउ। इसी की वजह ये है कि उसमें बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर हियर इन डैलस दैट आर डूइंग बिजनेस अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अक्रॉस कंट्रीज। अब जब ऐसा कोई बिजनेस ओनर है हु इज इन टू कॉन्स्टेंट receiving and sending of goods, be that dry goods or frozen goods, do you provide those services for the business market as well?
1: जी बिल्कुल, SFL वर्ल्डवाइड आपको शिपिंग में काफ़ी काफ़ी आपकी हेल्प करता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बिजनेस विच रिक्वायर्स गुड्स टू बी कमिंग फ्रॉम इंडिया, राइट? तो इसमें SFL वर्ल्डवाइड आपकी काफ़ी हेल्प करता है, आपका पूरा सामान जो है शिप करना फ्रॉम योर फ्रॉम मे बी फ्रॉम मुंबई टू दिस प्लेस डालस और मे बी सम अदर प्लेस, मे बी फ्रॉम यूरोप टू डालस, तो इसमें आपका सारा जो पैकेजिंग है एंड आपका जो शिपिंग है ये सब चीज़ में SFL आपकी काफ़ी हेल्प करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उससे आपको एटलीस्ट यू नो मिनिमम आई वुड से 50% लेस प्राइस आपको हम प्रोवाइड करेंगे।
0: एंड आई हैव सीन दैट एंड आई हैव यूज्ड SFL वर्ल्ड वाइड फॉर मेनी थिंग्स, आई नो द फाउंडर्स ऑफ SFL वर्ल्ड वाइड फॉर द लास्ट 20 years, एंड आई कैन टेल यू इट्स अ डैलस बेस्ड कंपनी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक लोकल फैमिली लोकल बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ अ शिपिंग एंड अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो अगर आपको अपना घर मूव करना है, यू वांट टू मूव इंटर स्टेट, यू वांट टू मूव इंटर कंट्री, or for that matter if you're a business and you want to move goods from here across the United States or for to different continents, they do that as well. Jaane se pehle aapka phone number, I will tell the website which is sflworldwide.com. why don't you share the phone number?
1: It's 800-691-2335.
0: 800-691-2335 is the number. Get with SFL Worldwide. For now it is not ole ole ole ole but ole ole.

0: The wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110. India Bazaar, the people's store.
1: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free three-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी
7: टाइम. कोर्ट डिसाइड करेगा.
8: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: Hocho.
12: Hoko.
11: Hocho.
12: Hoko.
11: Hocho.
12: It's Hoko.
13: अरे बस भी करो यार.
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ नहीं आ रहा है.
13: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

You know, you guys should sit in nature for 20 minutes a day. हर दिन 20 मिनट नेचर में आपको बैठना चाहिए, और अगर आप बहुत बिजी हैं फिर आपको एक घंटा बैठना चाहिए। अरे भैया, ये काम काज सब यहीं रह जाएगा मियां, जो लेके जाओगे आप साथ वो है यादें, वो है आपका पीस, वो है आपका कंफर्ट एंड द टाइम दैट यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मेक श्योर कि हर मोमेंट को चेरिश किया जाए, जैसे कि मैं करता हूँ जी। अपनी जिंदगी का हर पल को एंजॉय करने का फंडा है अपना, फालतू टेंशन लेनी नहीं। कोई दुखी करे तो उसको माइनस कर दो, कोई अच्छा लगे तो उसको प्लस कर लो। ये प्लस एंड माइनस का जो फंडा है ना, और अगर ऐसे प्लस वाले लोग और हों और चाहते हो तो उनको मल्टीप्लाई कर लो। ये है काम, बाकी सब बकवास है। मोह माया की तरफ मत जाया करो, सिर्फ 104.9 FM लगाया करो। दिस पार्ट ऑफ शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर वेरी ओन फ्लेवर लाउंज, जो कि फ्रिस्को में आ चुके हैं जी। एंड दे आर वन प्लेस फॉर फाइन डाइनिंग, अगर मैं बोलूं तो अच्छा, नॉट टू अपस्केल बट जस्ट द राइट मिक्स। फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे। फ्राइडे और सैटरडे और संडे तीनों दिन आपको मिलेगा जी वीकेंड लंच, विच फीचर्स माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट विल कीप यू गोइंग बैक टू द फ्लेवर लाउंज। सब कुछ मिलेगा आपको ओनली 24.99। एंजॉय द बफे ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से 3 बजे तक, एंड संडे फ्रॉम 12 नून टू 3:30 PM। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे ऑफ दिस जेंटलमैन, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों के गाने बनाए हैं, बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, एंड आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम हिम। आप मुझे बताएंगे कि ये किसका गाना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर, यू गेट योर सेल्फ डी वाइब रेस्टोरेंट है जी, जो कि आपके लिए ओबरी में खुला है। एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय फूडिस्तान। नाउ लेट मी टेल यू कि फूडिस्तान ग्रोसरी स्टोर भी खुल चुका है ओबरी में। इट्स राइट ऑन हाईवे 380। इफ यू लुकिंग फॉर ग्रोसरीज इन प्रॉस्पर, लिटिल एल्म, डेंटन, इवन टू पायलट पॉइंट एंड गंटर एंड ऑल दीज एरियाज, आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको अब नाम डालना है जी फूडिस्तान इन ओबरी। इंडियन ग्रोसरीज के साथ साथ पाकिस्तानी ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी स्टेशन और फ्रेश गन्ने का जूस, भाई साहब केटरिंग सर्विस के साथ आ चुका है विद अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस। यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ओबरी। और अब आपको दे रहे हैं वो मौका टू विन दिस गिफ्ट फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट दैट्स लोकेटेड फॉर यू इन ओबरी। उसमें आपको क्या मिलेगा, एनी आइटम ऑफ योर चॉइस, कोई भी एक आइटम आप अपनी चॉइस की जीत सकते हैं फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट दैट्स ऑल्सो नेक्स्ट डोर टू फूडिस्तान इन ओबरी। और इनका जो मैं गाना लगाने लगा हूँ, मैं लगाने लगा हूँ ये, अब इस गाने से इनका क्या रिलेशन है ये आप मुझे बताएंगे। बहुत सारी फिल्मों को कंपोज़र की तरह काम किया, जैसे कि अभे 1995, अभी जो मैं गाना लगाऊंगा वो भी आई थी 1996 में, और उसके लिए मिला था आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूज़िक टैलेंट। और उसके बाद तो भाई मैं कहाँ तक ले जाऊँ, इतनी कामयाब म्यूज़िक। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी जिसका एक गाना मुझे बहुत पसंद आया था, एंड आई एम गोना प्ले दैट आफ्टर दिस वन। तो जो अगला गाना लगा रहा हूँ, इसके म्यूजिक कंपोजर कौन है ये आप मुझे बताएंगे। ही इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। द थर्ड कॉलर हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स दिस गिव अवे फ्रॉम डी वाइब। रिमेंबर दिस डी वाइब रेस्टोरेंट इज इन ओबरी ऑन 380। तो अगर आप मुझे आंसर करने के लिए कॉल करेंगे, मेक श्योर यू आर एबल टू गो टू डी वाइब इन ओबरी एंड गेट वन आइटम ऑफ योर चॉइस। इंटायर मेन्यू में से कुछ भी एक आइटम बिंदास उठाने का। ऑल यू हैव टू टेल मी इज हु इज द कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक।

0: ऑल राइट, गाना लगते ही मेरे पास कॉल्स की लाइन हो चुकी है जी शुरू. लेट्स सी हु वी हैव ऑन नंबर वन हियर. गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, व्हाट्स योर नेम?
1: राजेश.
0: राजेश जी कैसे हैं? सब जबरदस्त है.
1: हाँ ठीक हूँ, आप कैसे?
0: गुड गुड. राजेश, कैन यू गो टू ऑबरी? व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपोजर आई एम लुकिंग फॉर?
1: विशाल भरद्वाज.
0: विशाल भरद्वाज कहते हैं राजेश भाई. राजेश भाई, स्टे ऑन द लाइन. आई मीन यू जस्ट कीप लिसनिंग टू द रेडियो बिकॉज़ यू वर कॉल नंबर वन. नंबर टू हियर, हु इज दिस? गुड इवनिंग.
2: हाय, दिस इज प्रवीण.
0: प्रवीण भाई, हाउ आर यू?
2: आई एम डूइंग गुड सर, आप कैसे हैं?
0: गॉड इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल ब्रदर, द वे आई पुट इट. यू टेल मी, डू यू नो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट आई एम लुकिंग फॉर?
2: या विशाल भारद्वाज.
0: विशाल भारद्वाज कहते हैं हमारे प्रवीण भाई. लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर थ्री, हु विल बी द लकी वन हियर. गुड इवनिंग फन एशिया, व्हाट्स योर नेम?
3: राहुल.
0: राहुल, नाम तो सुना होगा. हाँ
3: बिल्कुल.
0: क्या आपकी उंगलियां भी जब पियानो पे पड़ती हैं तो पियानो खुद ब खुद बजने लग पड़ता है? ऐसा होता है?
3: काश
0: काश ऐसा होता, कोई बात नहीं. बट आपकी चाहे उंगलियां पियानो पे पड़े और वो खुद बजे ना बजे, बीवी के एक इशारे पे आप जरूर बजते हो.
3: 100%
0: यही करना पड़ेगा. आपका नाम आपने क्या बोला था मुझे? राहुल.
3: राहुल,
0: राहुल कांग्रेचुलेशंस बड़ी. कैन यू गो टू ऑबरी?
3: श्योर, एब्सोल्युटली.
0: नेम ऑफ द आर्टिस्ट?
3: विशाल भारद्वाज.
0: विशाल भारद्वाज भैया, ये तो हो गया चौका, लग चुका है आपका. एनी वन आइटम फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट राइट देयर इन ऑबरी इज एब्सोल्युटली योर्स. यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी, डोंट गो एनीवेयर. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज. ये और इनकी बीवी दोनों इतने टैलेंटेड हैं कि क्या ही बात की जाए. बट लेट मी प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू इन कंटिन्यूएशन. आई विल कम बैक एंड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट द बर्थडे जेंटलमैन मिस्टर विशाल भारद्वाज.

चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। और कैसा चरखा चला था ना, ये क्या वाइब आई थी। मतलब द फर्स्ट टाइम दिस गाय, रादर सेकंड मूवी इनकी लाइफ की जो इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, पहली आई थी अभी 1995 में, एंड देन गुलजार साहब की लिखावट के साथ माचिस जो बनी, ओहो कमाल हो गया। और उसके लिए फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट मिला नन अदर देन मिस्टर विशाल भारद्वाज साहब को। उसके बाद बहुत सारे और कंपोजिशन जैसे सत्या 1998, जिसका हम वो गाना कभी नहीं भूल सकते ना, सपने में मिलती है। देन गॉड मदर, और उसके लिए भी मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। देन आई जी मकड़ी 2002 में, विच वॉज चिल्ड्रंस फिल्म। देन केम मकबूल, विच वॉज अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। देन मैकबेथ, विच वॉज अगेन फ्रॉम मैकबेथ से बनी ओमकारा, एंड ओथेलो से बनी हैदर, रादर हैदर बनी हैमलेट से, ओमकारा बनी ओथेलो से, मकबूल बनी मैकबेथ से। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ विशाल साहब, जिनका आज के दिन है जी जन्मदिन। एक गाना इनका रिसेंटली आया था फ्रॉम वन ऑफ हिज फिल्म्स, एंड आई रियली लव दिस कंपोजिशन इज वेल। ऑल्दो इसकी राइटिंग इज वेरी मॉडर्न, बट इट हैज़ दैट ओरिजिनैलिटी ऑफ पैशन विच विशाल भारद्वाज के गानों में जो नज़र आता है। एंड दिस इज वेरी सूदिंग, वेरी सटल, येट इट हैज़ दैट मॉडर्न टच टू इट्स द सॉन्ग इट्सेल्फ। ये सुनिए फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो, वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पोजिशंस फ्रॉम विशाल साहब। सो लाइट येट सो ब्यूटिफुल।

Absolutely, Bindas Bolo Ji, Naam Marvin Das Bolo. Welcome back to your evening drive time show, which is only on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Kya haal chaal hai DFW? I hope that you're doing wonderfully well. Jahan pe bhi aap, meri dua ye hai ki aap bilkul sahi, salamat aur khush rahein. Because khush rehna sabse zyada zaruri hai yaar. Baaki sari cheezein jaye tel lene. Aap sirf apni खुशी पे फोकस करो, बाकी तो सब मोमाया बड़े भैया. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे आल्सो ऑफ दिस जेंटलमैन, जिनका जी बहुत सारी फिल्में आई और उनमें से कई फिल्में आई अपने भाई के साथ. और भाई जो इनके हैं वो तो जानी मानी एक पर्सनालिटी, मतलब इनके बिना तो बॉलीवुड ही नहीं चलता. कौन है ये, करते हैं इनकी बात. पहले आपको ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ड्राइव टाइम स्पॉन्सर, जिनका नाम है अटर्नी ओमर ख्वाजा. ऑल्दो आई नेवर विश दैट यू आर इन्वॉल्वड इन एन एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, बट अगर बाय चांस किसी की नजर लग गई और गाड़ी आपकी लग गई भैया, तो आगे का प्रोसेस क्या है वो आपको 911 कॉल करने के बाद, मेकिंग श्योर दैट यू आर ओके, द फर्स्ट कॉल यू विल डू इज टू अटर्नी ओमर. व्हाई विल यू डू दैट? बिकॉज ही विल फाइट विद द इंश्योरेंस कंपनीज, गेट यू द कॉम्पनसेशन यू डिजर्व, एंड वो सारा काम, सारी लड़ाइयाँ यही करेंगे आपके लिए. तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. यू सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट द अटर्नी डू हिज जॉब. अटर्नी ओमर.com ऑन द वेबसाइट फॉर यू. बर्थडे विश कमिंग अप फॉर दिस वन हियर.

अरबाज सलीम खान है जी इनका नाम, जिनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन फनेशिया रेडियो। बॉर्न ऑन द 4th of August 1967, इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, बहुत सारा काम हिंदी फिल्मों में, कुछ काम तेलुगु, उर्दू और मलयालम सिनेमा में भी किया। आज ही के दिन पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इज 59 ईयर्स ऑफ एज। अरबाज सलीम खान यानी कि सल्लू भाई के भाई, एंड डेब्यू हुआ था 96 में, एंड दैट वॉज द एंट्री। एंड उसके बाद अरबाज खान प्रोडक्शंस के अंडर एक फिल्म आई जिसका नाम था दबंग, और बस फिर क्या था, दबंग ने कर दिया कमाल, बिल्कुल दबंग बजी ऑन थिएटर्स एंड इन पीपल्स हार्ट्स एज वेल। एंड देन दैट फिल्म वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, एंड ऑल्सो होस्टेड द रियलिटी टीवी शो जिसका नाम है पावर कपल, विच एयर्ड ऑन सोनी टीवी इन 2019। Wishing Mr. Arbaaz Khan a very happy birthday, and this birthday wish is brought to you by Himalayan Bazaar, जो कि Grand Prairie वालों आपकी परेशानी हो गई दूर। भाइयों और बहनों, no sorry friends, if you live in Grand Prairie तो आपकी दुख की घड़ियां खत्म हो चुकी है भैया, because आपके लिए आ चुका है Himalayan Bazaar। They are located right on 360 and Highway 20 के intersection के बिल्कुल पास, which is at 5103 Magna Carta Boulevard in Grand Prairie। तो अगर आप Grand Prairie में रहते हैं, if you are on Highway 30 anywhere, Highway 20 anywhere, on Highway 360, you're in Mansfield, you're in Arlington, or you're in Grand Prairie, this is your next destination. Chahe South Asian grocery ki baat ki jaye, authentic groceries ke saath saath sara fresh produce that we need, premium halal meats and everyday essentials, and even for my Nepalese bhai and behne, there is water buff for you guys, go enjoy that. Aur har sham ko taza taza samosa, pani puri, masala chai, and coffee while you wait, man. और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताता हूँ, ये भी लो। अगर आप 5 mile के रेडियस में रहते हैं, $50 के ग्रोसरी पे, लेडीज इफ यू लिसनिंग टू मी, इफ यू लिव इन ग्रैंड प्रेरी, 5 miles के अंदर रहते हैं आप हिमालयन बाजार से, देन आपको $50 की ग्रोसरी पे बिल्कुल फ्री डिलीवरी मिलेगी। लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज, विच इज $1 पर 1 point फॉर एवरी डॉलर, विच मीन्स अगर आपने $100 खर्चे तो 5% ऑफ भी मिलेगा। दैट इज 5103 मैग्ना कार्टा बुलेवार्ड, हिमालयन बाजार, वेयर एवरी आइल फील्स लाइक होम। एंड इफ यू हैवंट बीन टू दैट स्टोर, जस्ट गूगल हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी एंड मेक दैट योर नेक्स्ट स्टॉप। अब अरबाज साहब की बात हुई है तो इनकी लाइफ का एक और गाना बहुत बड़ा था, दैट केम अलॉन्ग विद मलाइका अरोड़ा, एंड दैट वॉज दिस वन।

Also celebrating his birthday today is Adhir Kalyan. If you've seen the movie No Strings Attached 2011, mein, he was playing a role there and also played the role of Timmy on CBS Rules of Engagement. We are celebrating him as well. Happy birthday to Adhir Kalyan. Uske saath saath ye to chale gaye hamare zindagi mein syapa ghol gaye. Inka naam tha Louis Vuitton. अब बीवियों ने तो बोलना है लुई विटॉन, ये मर गया जिसने लुई विटॉन ब्रांड बनाया था. इनका खुद का नाम लुई विटॉन था. बॉर्न ऑन टुडेज डेट 4th of August 1821 एंड समबडी हु इज नोन फॉर हिज लेदर प्रोडक्ट्स, हिज फैशन हाउस बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. और वो कहते हैं ना छोड़ गए और सज़ा हमारे को दे गए, ये वही हिसाब करके गए हमारे साथ लुई विटॉन साहब. आज के दिन इनका भी होता है जी जन्मदिन. अलॉन्ग विद दैट वी हैव बिली बॉब थॉर्नटन, मूवी एक्टर, बॉर्न ऑन 4th of August 1955. ही इज 71 ईयर्स ऑफ एज. डायरेक्टेड, रोट एंड स्टार्ड इन द 1996 फीचर जिसका नाम था स्लिंग ब्लेड. देन अर्नड हिम अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड एन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले. ऑल्सो प्लेड मेमोरेबल रोल्स इन द फिल्म्स लाइक मॉन्स्टर्स बॉल, बैड सेंटा इफ यू रिमेंबर दैट, अ सिंपल प्लान, बैंडिट्स, द मैन हू वाज़न्ट देयर एंड फ्राइडे नाइट लाइट. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर बिली बॉब Thornton from the team here at Fun Asia Radio. Some more that I'm going to share with you as I come back from the next commercial break. Ek gaane ka aur waqt hai, wahan chalte hain aur break ke baad aata hoon wapas. Only on your favorite station, Fun Asia Radio.

0: कभी कभी माता पिता के साथ भी बैठा करो, सारी बातें और ज्ञान सिर्फ गूगल पे नहीं मिलता दोस्तों।
1: Moments don't fade, they echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco, PMJ Jewels, India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी at Chandigarh Bites Express.
9: And now at a bigger location just 3 doors down with limited reservation available.
10: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
11: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
10: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Funasia.
11: Register free now at meditation.funasia.net.

आपने ये कहावत तो सुनी होगी या बात तो सुनी, कहावत नहीं बात है कि कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ब्रो, कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और स्पेशली जब आप कभी घर से बाहर निकलें, बीवी के साथ हों और पड़ोस वाली हाय कर दे। पड़ोस वाली तो हाय करती है, एक बारी उसके बाद आप करोगे हाय हाय हाय।

बंदाए बिंदास है जी, नाम मारविंदास है। वेलकम बैक टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो। 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में भैया। जी हाँ, 25 ही हैं, चेक करके बताया। यू आर लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो। 4 अगस्त की डेट है, ट्यूसडे का है जी दिन, और मंगलवार है, यानी कि मन की बात जो है बीवी से नहीं करनी, क्योंकि मंगलवार मन की गल अगर बीवी के साथ करोगे तो ढाए ढाए ढाए। ये भी पीछे से बोल गया, ना ना ना ना ना ना ना ना, इससे अच्छा है कि ना ना ना ना। चलो जी, मैं आपके साथ रहूंगा ऑल द वे टिल 7 o'clock। कुछ कॉन्टेस्ट मेरे पास अभी भी हैं जी बाकी, एंड आई एम ऑल्सो गोना शेयर अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन, क्योंकि चौकटाओ कसिनो दे रहा है जी आपको मौका टू विन समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम चौकटाओ कसिनो। पहले तो डेली प्राइजेस हैं जिसमें आपको वहाँ के डाइनिंग एक्सपीरियंसेस जीतने को मिल सकते हैं, स्टे गिव अवे जीतने को मिल सकता है, एंड रिजॉर्ट स्टेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट के आपको वाउचर्स मिल सकते हैं, दैट इज ऑन अ डेली बेसिस। बट द ग्रैंड प्राइज इज अनफॉरगेटेबल सिबलिंग्स री यूनियन वीकेंड एट द चौकटाओ कसिनो एंड रिजॉर्ट इन डुरांट, एंड दे आर वॉन्टिंग टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद यू इन सेलिब्रेशन of a memory with your brother or your sister. आपको एक मिनट का वॉइस नोट भेजना है व्हाट्सएप पे 2148377147, 2148377147। इस पे आप अपना एक मिनट का वॉइस नोट भेजेंगे, एंड whoever selected will win a lot of prizes including daily prizes like I mentioned, which is dining experiences, entertainment and resort stays, and the grand prize of a reunion weekend with your sibling. कैसे जीतना है इसके लिए आपको हमारे कॉन्टेस्ट के में एंटर लेना करनी है 2148377147। इस पे आपको आपका ये एक मिनट का नोट भेजना है, या फिर अब जब मैं आपके साथ हूँ इन द नेक्स्ट, ये जो मैं गाना लगाऊंगा इसके साथ साथ, अगर आप मुझे कॉल करके स्टूडियो की लाइन पे बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज, और जो हमारी मैनेजमेंट टीम है यहाँ से भी इन टॉपिक्स को लेगी, दे विल बी शेयर्ड बाय चौकटाओ, and whoever they like they will choose to give some prizes. to agar aap male hain, I want to hear a story about your sister, aur agar aap female hain, then I'd like to hear a story about your brother. we are talking about just memories, childhood ki kuch yaadein, kuch baatein jo aaj bhi aapko yaad ho apni behan ya apne bhai ke bare mein. main studio ki line khol raha hu for you guys to call me. 972-235-5555 is the number to the studio.

0: Massacre is the name of the track, Alia Bhatt from the movie Alpha. Let's see who do we have with us on Fun Asia Radio who'd like to share something from their memory lane. Good evening to you, Fun Asia. Who's this?
1: Hi, this is Fatima.
0: Hi, Fatima. How are you?
1: Very well. How are you?
0: God is great. Life is beautiful, Fatima. Apart from the injuries in my head, which pop up every now and then when I talk to somebody, rest is gravy and good.
1: I hope they don't pop up while you're speaking to me.
0: I hope they don't. All right, Fatima. Bataiye kya yaad hai aapki aapke bhai ke saath that you'd like to share with us.
1: So, we are just two siblings, me and my younger sister, Maria. Mm-hmm. But hamare ek rakhi brother hote hain, jinka naam hai Nitin bhai.
0: All right.
1: So Nitin Bhaiya was an ex-student of my father's. My father was a principal of a boarding school in Nainital.
0: And oh, beautiful place.
1: Yes. And some people just turn to, you know, become family. Mm-hmm. And Nitin Bhaiya was one of his first students to pass from his school. Mm-hmm. So Nitin Bhaiya jo the, wo hamari zindagi mein bilkul hamare रिश्ता था उनके साथ और उन्होंने हमेशा भाई का रोल प्ले किया हमारी जिंदगी में.
0: Wonderful. Are you guys still in touch? Are you guys still in touch?
1: Always. Yes.
0: Good to know.
1: He is my brother.
0: Wonderful.
1: So Nitin भाई दिल्ली में होते थे, हम लोग नैनीताल में पढ़ रहे थे. We were growing up there. जब वो पास आउट होके चले गए तो हर बर्थडे, हर रक्षाबंधन, नितिन भाई की खुद की अपनी बहनें भी थी तो वो पहले बरेली जाते थे बिकॉज दैट्स वेयर हिज पेरेंट्स यूज्ड टू लिव, हिज फैमिली वाज देयर. वो बरेली से रक्षाबंधन में अपनी बहनों से राखियां बंधवा के फिर मैं और मेरी बहन उन्हें नैनीताल में राखी बांधा करते थे. तो ही यूज्ड टू ट्रैवल टू बरेली फर्स्ट एंड देन ही यूज्ड टू कम टू नैनीताल और हमारे घर में फिर हम उन्हें राखी बांधा करते थे.
0: Fatima ji, that is such a pure-hearted story. I love it. Thank you so much for sharing it. And aaj ke zamane mein aisa pyar dekhne ko asli bhai mein nahi milta. And you're still maintaining that relationship. I am so glad for
1: yes,
0: the.
1: I am glad too. And it's beautiful.
0: I think part of that is the upbringing that you guys had. I give kudos to your parents jinhone itni achhi values aapko aur Nitin bhai ke parents ko bhi likewise. I think because it all starts from the pauda, na? Agar pauda acha ho,
1: exactly.
0: To phal bhi achhe hote. So, Fatima ji, I thank the plant that planted you, and you are here for them because of them. I salute them. Thank you very much. And I love to
1: thank
0: hear
1: you.
0: This story, Fatima ji. Ek kaam aapko ab ye karna hai ki jaisa rishta aapka Nitin bhai ke saath tha, वैसा ही रिश्ता आपको मेरे शो के साथ और मेरे साथ बनाना है. जब आप गाड़ी में होंगी तो आपको ये सुनना है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज फातिमा तक जरूर पहुंचे.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Thank you very much. That was Fatima with a lovely story. Let's see who we have next here. Good evening, Fun Asia. Who's this?
2: Hello.
0: जी हेलो.
2: हेलो, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: सईदा जी सलाम, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आपके बोलने का अंदाज, बातें, मस्करापन बहुत अच्छा लगता है.
0: बहुत शुक्रिया. आपकी कोई यादगार जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे
2: लिस्नर्स के साथ? मेरे तो भाई हैं यहाँ पर कनाडा में हैं, तो मेरा मुझसे 1.5 साल बड़े हैं, लेकिन मैं बहुत रोप चलाती हूँ.
0: अच्छी बात है, कोई चाहिए रोप चलाने वाला.
2: हाँ, तो हम लोग स्कूल में भी साथ थे, क्लास में भी साथ हो गए. वो हमें डबल प्रमोशन मिल गया तो मैं उनको साथ हो गई.
0: कोई, कोई, कोई एक खास याद जो आपको याद हो जल्दी से?
2: जी जी, तो ये याद है कि वो जब हम लोग की छुट्टी हुई, जो मैंने सुना कि उसी ने बताया कि भाई वो एक लड़का हुआ है ना, नूरैन, मेरे भाई का नाम नूरैन था, तो उनको मार रहा है. मैं तो मॉनिटर भी थी क्लास में, मैं जाके उसको मारा है ना, बहुत बटन बटन सब तोड़
0: दी. इसका मतलब इसका मतलब सायदा जी जैसी बहने तो सबको चाहिए. सायदा जी,
2: जी जी,
0: इस राखी में मुझे राखी बांध दीजिएगा, कहीं मुझे चार लोगों ने कहीं पकड़ लिया तो आपको आवाज लगाऊंगा.
2: हाँ बिल्कुल, आ जाइए, बांध देंगे.
0: बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट शेयर एज वेल. सी, दीज आर लवली स्टोरीज दैट छोटी छोटी यादों में कितना फन है ना यार. और आज एक और चीज आपको याद करवाता हूँ, क्या ये लो.
3: Ladies and gentlemen, the next president of the United States of America, Barack Obama.

0: He worked as a paperboy and sold food. He salvaged to restaurants. Bunk Johnson taught him how to play by ear when Armstrong was 11 and had dropped out of school. This is the story of this legendary artist whom I love from the bottom of my heart. And I think this track is just so beautiful. What a Wonderful World. When you get time, sit by yourself and listen to this track. It is just amazing. You're listening to an Evening Drive Time Show right here on Fun Asia Radio. And aaj ek to birthdays aur hain yaar. Usme se ek birthday hai ji is khatarnak awaaz wali lady ka. Again, she's no longer with us, but she's given so many years to Bollywood that you will be amazed to see kitna lamba safar inka Bollywood mein tha.
1: Kya tha?
2: Kya?
1: Tumhare dar se.
2: Mere dar se?
1: Haan, maa, tumhare dar se. मैंने इन मासूम बच्चों से कहा था कि चुप रहे, वरना तुम मुझसे पूछती कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से, और फिर तुम्हें जिसने पैसे दिए उसके पास इतने पैसे आए कहां से। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर तुम एक फसाद खड़ा कर देती।
0: एंड एक और डायलॉग सुनाता हूँ, यहाँ तो आपको पता लग ही जाएगा जी किसकी बात कर रहा हूँ।
3: जैसे कोई आवेगा और रूपा को दुल्हन बनाकर ले जावेगा।
4: अरे ले जावेगा तब ना।
0: आई एम टॉकिंग अबाउट शशिकला सियागल, जिनका जी नाम जो स्क्रीन पे था जवालकर था। एंड शशिकला बेटर नोन विद हर फर्स्ट नेम इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, बहुत सारी फिल्मों में काम। इनका पहला रोल आया था इन द ईयर 1936 जो थी करोड़पति फिल्म, एंड हर लास्ट रोल वॉज इन द ईयर 2004, एक्चुअली 2004 एज ग्रैंड मदर रोल इन द मूवी रख्त 2004। तो आप लगा लें कि 37 से लेके 2004 तक शी गेव सेवरल ईयर्स टू बॉलीवुड, एंड वी आर रिमेम्बरिंग शशिकला ऑन हर बर्थडे 4th of August 1932। शी वॉज बॉर्न एज वेल। वन मोर ट्रैक इसके बाद लेते हैं जी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के उस पार अ लॉट मोर फन कमिंग अप जस्ट फॉर यू ऑल। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदा शो मैन।

0: मेरा एक दोस्त है बेचारा, बड़ा ही परेशान रहता है यार। पता है उसकी ना गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, मतलब शुरू से आज तक कोशिश उसने बहुत की, बट वो फ्रेंड जोन में रह के रह जाता है। आई जस्ट लाइक यू लाइक माई फ्रेंड डूड। तो उसने पूछा, मारविन मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल तेरी सिचुएशन ये है कि जैसे पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत नहीं ले जा सकते थे ना, बस उसी तरह तेरी भी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front पेज पे रहूँ।
5: Front पेज का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
4: कैसे?
5: Page 3 eatery?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
3: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
6: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call कीजिए कामना को at 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
2: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
1: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
2: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
3: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
4: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
6: उमर ख्वाजा।
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
10: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: सफर होता।
1: आज के दिन एक और आवाज पैदा हुई जी, जिसका नाम था किशोर कुमार, बर्थ नेम आभास कुमार गांगुली। आज के दिन 4th ऑगस्ट 1929 में इनका जन्म हुआ। 13th ऑक्टोबर 1987 ही पास्ड अवे। इंडियन प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, जिन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया का दिल जीता। एंड नॉट ओनली इन हिज एरा, बट मैं कहूंगा उनके जाने के बाद भी इनके फैन की कतार जो है वो लंबी होती ही गई। एंड दैट इज किशोर कुमार साहब। अ वेरी हैप्पी हेवनली बर्थडे टू हिम। Somebody who was noted for his yodeling and ability to sing songs in different voices. और ये जो गाना था, ये दिल ना होता बेचारा, was a good example of his yodeling that we saw in his singing styles. अब अगर बात करें इनके और कुछ गानों की, या जो variety इनके गानों की थी, जो versatility ये लेके आए सिनेमा में with his acting, with his singing, with everything that he touched. वो कहते हैं ना Midas touch वाली बात, कि हर चीज़ जिन जिन को हाथ लगाया, जिस जिस को हाथ लगाया, वो बढ़ती गई, तरक्की करती ही गई। एंड जैसे कि ये गाना था योडलिंग वाला, ये दिल ना होता बेचारा, एक और गाना और आया था जो कि योडलिंग से जाना गया, एंड दैट वाज अगेन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार साहब। एंड वो गाना ये रहा आप लोगों के लिए। उससे पहले, दिस बर्थडे विश एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर। आपके लिए खुल चुका है जी, राइट हियर इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को विद अ ब्रांड न्यू लोकेशन। एंड इफ यू हैव anything to do with any body ache, especially अगर आपके joints में pain है, आपके parents के joints में pain रहता है, you have back pain issue, you have sciatica issues, this is the place that you need to go to. And ये जगह जो है आपको देगी जी one on one attention with their state of the art Frisco location, from orthopedic and sports injuries to pelvic floor therapy, massage therapy, geriatric rehabilitation, sports medicine, red light therapy and functional nutrition. They will deliver personalized care to you. And मेरी recommendation पे आपने दवाइयां खाने से पहले, pain killer खाने से पहले एक बार Texas Star Rehab के पास जरूर जाना है। They have two locations, one is in Irving, one is in Frisco. Both of them will take excellent care of you. And I trust this place because the owner and founder of Texas Star Rehab, his name is Rushi, and he's a physiotherapist who is also the physiotherapist for Mumbai Indians, New York, and Sachin Tendulkar tak sahab tak ki jo physiotherapy hai ye kar chuke hain. So somebody who's very well known and trusted by athletes, entertainers and community leaders, and I personally vouch for Rushi and Texas Star Rehab. The website for you for more information is texasstarrehab.com. taking you back to the yodeling days of Kishore Da.

एक फिल्म आई थी इनकी जिंदगी के सफर में जिसका नाम था हाफ टिकट, और ये जो फिल्म थी हाफ टिकट, इसमें ना एक गाना था आके सीधी लगी दिल पे, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर साहब थे जिनका नाम था सलील चौधरी, इन्होंने सोचा था कि एक डुएट करवाएंगे और चाहते थे कि किशोर कुमार साहब के साथ लता मंगेशकर जी इस गाने को गाएं, बट लता जी वॉज नॉट इन टाउन एंड सलील चौधरी को रिकॉर्ड करना पड़ा वो गाना लता जी के वापस आने से पहले पहले। तो किशोर कुमार साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं दोनों की तरफ से वो गाना गा देता हूँ। तो लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ दी थी किशोर साहब ने। हियर वी गो।

That was Kishore Kumar Sahab at his best with the two voices that we could hear him sing in. And मैं इनके बारे में तो क्या ही बोलूं यार. I'm sure that आप सब इनको बहुत प्यार करते हैं. And you have loved him through so many years, so many different songs, so many different variations of his voice. और एक गाने के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, because my show is ending and मेरे बाद इपी द हिपी विल टेक ओवर फ्रॉम 7 to 10. बट आपको पहले ये बता दूँ कि IANT का जो इंडिया बाजार आनंद बाजार मेला है, विच इज़ द इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, दैट इज़ सेट फॉर द 15th of August. एंड इस इवेंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. दिस इज़ वन इवेंट फॉर द इंटायर फैमिली. द बेस्ट पार्ट इज़ कि कोई टिकट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा इस गर्मी में, तो चिंता ना करें, दिस इज़ टोटली इंडोर्स. दैट इज़ ऑन 15th of August एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. 2 बजे ये इवेंट शुरू होगा. एंड इसमें क्या क्या होगा, बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, नॉट वन बट मैनी, अ ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग एंड मच मच मोर. अपनी पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आइए एंड लेट्स सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे द IANT वे एट द आनंद बाजार 2026, Saturday, August 15th, 2 p.m. onwards, and that is at the Comerica Center in Frisco. आज के लिए इतना ही वक्त है जी मेरे पास, and I'm going to leave you with a beautiful track, again, from the legendary Kishore Kumar Sahab, with in remembrance, क्योंकि इनकी तो अब यादें ही हैं, और इनकी आवाज रहेगी हमारे साथ forever. With this, it's the last song of my show. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. ऊपर वाले दी जिंदगी, तो कल फिर से होगी जी मुलाकात 5 to 7 ऑन योर फेवरेट स्टेशन, जिसका नाम है फन एशिया, विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो. दुआ में मुझे याद रखिएगा. आई विल डू द सेम फॉर यू. अदियोस, गुड नाइट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: Hoko.
10: Ocho.
11: It's Hoko.
12: Arre bas bhi karo yaar.
11: Arre naya restaurant hai par naam samajh hi nahi aa raha hai.
12: Naam Hoko ho ya Hocho, kya फर्क पड़ता है?
13: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
14: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
15: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
16: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free